माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कौसन बंद हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस गए शरीर। रहाओ भक्त जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे गृहस्थ उदास रहाई।

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल अरहाव मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माता पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ करत करत अनकबो पाती

अनेक करणी सबल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे भय पूर्ण काम सास सासना बिसर कब हूं

अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर सरण गुजरी मोहल्ला पंजवा अहं बुद्ध बहु सघन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु।

आराद श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमण श्रमण अपार महिमा फिर न होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रगास पए सासंगे दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरह संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ। शरण पर्यो नानुता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला तार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियले

करे पिखिया कहो केते उधर भरन कहताई, बिन घर भगत नाही सुख प्राणी, बिन गुर गर्भ ना जाई। ऐ जी काल सदा सिरी ऊपर ठंड, जन्म जन्म वैराई, साचे शब्द रते से बाचे, सदगुर बूझ बुझाई। गुर शरणाई जोए न सके, दूत न सके संताई, अवगत नाथ निरंजन राते, निरपोस्यों लिवलाई। ऐ जी ओ नाम दिड़ो नाम।

परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझ की स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किस रहे ना दिसै

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रत्या

स्वामी तेसो गुर की सिख सुनाए, हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छिडाए पौड़ी, जिन्ना हुक्म नाए ते पूरे संसार साहिब सेवने अपना।

भव अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोय, भव कर्मी पाईए आप दया कर दे। नानक भव गुरमुख पाईए अनदिन नाम लए मोहल्ला तीजा, बिन सतगुर सेवे सांत न आवई दूजी ना ही जाए। जे बो तेरा लोचिए विण करमे ना पाया जाए, जिन्ना अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए। जमन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए, जिन्ना सगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है। तिन जम की तलब ना होवई नावे दुख सहा है, नानक गुरमुख उभरे

का बोलिया प्रवान है दरगह पवे थाए भगता तेरी टेक अरते सच नाए जिसनु हुए किरपाल तिसका दुख जाए भगत तेरे दयाल ओना मेर पाए दुख दर्द वड़ रोग ना पोगे तिस माए भगता इहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको एक त्याए पीवत अमृत नाम जान नामे रहे अघाए श्लोक महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनु विसरे नाओ नानक अनदिन बिर

क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बस नानेवार राख लियो प्रभे अपने नानक सरबरे हार महला पंजवा खांदियां खांदियां मोह कठा पए नंदियां सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीवया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी

जीवै रग राई, तन ना बोना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रखाओ, जब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही, ओशी मत मेरी जात जुलाह। हर का नाम लयो मैं लाह, कहत कबीर।

आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटया अंधेरा दुख नाठा, आम्यो हरस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जान कहे नानक सतगुर मिलाया।

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनव मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइये। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्स दिखाइये। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध।

जिन हर घर संजोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे, अन दिन नाम खाना राम। अमृत बाणी उच्चना हर जस,

बिनवंत नांग सदा निर्मल सच शब्द रोण चुनकारु सुन वडभागिया हर अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिनी जानी जिस आपरा कृपा करे अमरथिया फिर ना मुआ कल कलेसा दुख हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नांग सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किस कहन न जाई राम जिस ते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल मैयल एक रव्या नै दूजा दृष्टाया बण त्रैण तिरपवन पूर पूरन कीमत कहन न जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन ए बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरे प्रभ प्राण अधारे राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रा मिलो प्यारे मया तारे कर दया।

प्रीतम समरथ कारण करना। नानक चात्रक हर बूंद मांगे जब जीवा हर घर चरना। अमे सरोवरो पियो हर घर नामा राम। संत संग मिले

वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतर ना संग शोभा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन सा संगम सब मिथया संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे जा।

मन लह सो जन सा बास तव तेरा चोज वर्तदा दुख सुख तुझ पास। श्लोक महला तीजा गुरमुख सच्चे पाम दे दर सच्चे सच्यार साजन मन आनंद है गुर का शब्द विचार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया

जे आसा अंदेसा तज रहे गुरमुख पिखिया नाओ इसके चरण पखाली है। नानक हो बलिहारे जाओ मोहल्ला तीजा नानक तरवर एक फल

आहार, नानक यो पूजन सच है, सच नाम आधार। काया लहन आव मद, अमृत की तार, सत्संगस्तु मेलाप होए, लिप कटोरी अमृत भरी, पी पी कटे विकार पौड़ी। आपे सुनर गण गंधर्वा, आपे खड़ दर्शन की बाणी, आपे सिर संकर महेशा, आपे गुरमुख।

राम राम करता सब जग फेरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुले आ जाए। कीमत कने न पाई, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमयोग है।

एमान यो तन नाम है जित सदा सदा सुख होए तोटा मूल न आवई लाहा सदगी होए खाद खर्चे तोट न आवई सदा सदा ओ दे सहसा मूल न होवई हांत कदे न होए नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी आपे सब कट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जहर जो शक्ति गोबार कर वर्त्या सुनहर उत वेद पुराण ना सास्ता आपे हार नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूगी बाहर अपनी मित आप।

इंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुगद गवार, ओए जा आ डुबे तुम कहां तरनहार पौड़ी, सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कह पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आवंदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते जोगी की नगरी सब को वस पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए पौड़ी, आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना सुजई।

आए, निर्मल नाम से मन आए, पर में भूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुवार, नानक से बड़ भागी जिन घर नाम के आया, गुर प्रसादी मन मसाया, वढ़हंस महला तीजा, हम में नावे नार विरोध है, दोना वसे एक ठाए, हम में जो सेवा ना हो गई कामन बिरथा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मने ता हर मिले ता विचो।

नेतन सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ठ पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वढ़हंस महला।

खेल खिलाइए बालक रह न सके बिन कीरे। मेरे अंतर भूख न उतरे अमाली जे सो पूजन मैं नीरे। मेरे मन तन प्रेम प्रेम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई मैं मिल्यो मित्र सुखदाता। ओ जी की मेरी सा बेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हाँ एक खेन तिस बिन रह ना सका।

माली, गुर सदगुर कै लग पैरे। वढ़ांस महला तीजा, अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सच्ची बाणी सच धुन, सच शब्द विचारा, अन दिन सच सलाहना। तन तन वड़पाग हमारा, मन मेरे सचे नाम विटो बल जाओ। दसन दसा होए रहे, ता पावे सच्चा नाओ। रहाओ जेवा सच्ची सच रती, तन मन सच्चा होए। बिन सचे होर सराहना, जासे जन्म सब खोए। सच खेती सच बीजना, सच आवा पारा। अन दिला सच नाम तान, भगत परे पंडारा। सच खाना सच पहनना, सच टेक हरनाओ। जिसनु बगसे तिस मिले, मैली पाए थाओ। आवे सच्चे जावे सच्चे, फिर जूनी मूल ना पाहे। गुरमुख दर सच्चे सच्यार है, सच्चे महे सुमाहे।

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय पुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप मनावना, जिस नाल संगत कर श्री

मामना साभ्यो पाइगन आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सा मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किस पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिले कर्म होआ तुर कदे सब उपाय गिने आप आपे नजर करे वढ़ांस महला पहला करो दया तेरा नाम खाना सब उपाय गे आप आपे सर्व सुमाना सर्वे सुमाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत परम फुलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम खाना नाम तेरा है सच्चा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए सुमाना गावन सुरनार सुगड़ सुजाना सुरनार सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेते नाही अहला जन्म गवावे एक मूड़ मुगदना चेते मूले।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार सेजन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडपा गो राम। गुरमती मन च कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सद बैरागो साचर ते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उबजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्या ई राम। गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहया सुमाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वसे ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विभूति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंत तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल, जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई, मनमुख अंदले ज्ञान विगुणे दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा, सदगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन माया मोह वे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द सुमाने सच रते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवने

सदगुरु ज्ञान खड़ग हद तीना यम कंकर मार बिदारे हर प्रा कृपा धारी सुखदाते दुख लाते पाव संतापा सुन गुरमुख नाम सा बिनसे होमे पापा जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया आरोगत पए शरीरा अन दिन सह समाध कर लागी हर जपया गैर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरे मन पाया हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तू दुख पंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सदगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम वढांस महला चौथा कोड़िया एक ओंकार सदगुर प्रसाद दे तेजन जी राम पाइया राम तन मानस जन्म पुन पाइया राम मान जन्म वड़ पुन ने पाया देसो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया ए देसो बाकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वड़फागी पाई नाम सखाई जन नानक राम पाइया दे पाओ जीन बुझ चंगा राम चढ़ लंगा जी बेखम पोयंगा राम बेखम पोयंगा अनत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोझ चढ़ वड़ भागी लंघे गुर खेवट शब्द तराए अन दिन हर रंग हर गुण गावे हारंगी हारंगा जन नांग निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा।

अंतर सांत सदा सुख दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम निवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो पाओ ओसनु सुख न उबजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे सिउं लिवलाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल न हो गई हौमे शब्द जलाए कूड़े की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर सांत मन सुख होए ससंजम कार कुमाए नानक पूरे कर्म सतगुर मिले हर जीव कृपा करे रजाए। पौड़ी जिसके कर दीवान हर होए जिसकी मुठ्ठी

ब्राह्मण हारा यू मनुआसदा सुख वस सहज करे व्यापारा अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करा मनहारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तू होवे दर्श प्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए तू सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जे हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस हर नाम सुने मन अंध पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तिल गुरसिख कौ फाउ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया सलोक महला तीजा मन हड़के ने न पायो सब थके कर्म कमाए मन हड़के कर परम दे दुख पाया दूजे पाए रिद सिद्ध सा मोह नाम नवस्ते मन आए गुरसेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए।

नित नित हुए खुवार, नानक किरद पय कमावना कोई न मेटन हार पौड़ी। तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हम को सांते आई। तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हम हर भगत पाई। तन तन हर भगत सतगुरु हमारा, जिकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई। तन तन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा, जिन वैरी मित्र हम को साध समधिट दिखाई। तन तन सतगुरु मित्र हमारा, जिन हर नाम से हमारी प्रीत बनाई। श्लोक महला पहला। कर ही मुंद वदेश पेर ने चूरे संभाले, मिलद्या टे

प्रसन्न कोई न किसी जेहा अंडज जेरज उत्पुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महे रवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किस दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख परम रस राते ठाकुर सर।

निर्मल नाम जपो सदगुरमुख अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड त्याग हो सदगुर बचनी फल पाही जियो। जो पावे त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही।

मन रे समझ कम मत लागा, नाम सार अनस लोप हाने, हे पछताए अपागा रखाओ। आपत को हरख जात को रोवे, ए दुसुख ना लेन लागा, आपे दुसुख भोग पुगावे, गुरमुख सु अनरागा। हरस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन इवरस खोया, क्या साकत दुर्मत लागा। मन का जियो पावन पात देही, देही मैं जियो सुमागा, जो तू दे ता हरस गाई, मन तृप्ते हर लिव लागा। साध संगत में हरस पाई है, गुर मिले जम पौ पागा, नानक राम नाम जब गुरमुख हर पाए मस्तक पागा। सोरठ महला पहला, सर्व जिया सिर लेख तुराहू, बिन लेखे नहीं कोई जियो, आप लेख कुदरत कर देख, हुक्म चलाए सोई।

मन मेरे गुरबचनी निद पाई ताते सच मैं रहा समाई रहाओ गुरसाखी अंतर जागी ता चंचल मत त्यागी गुरसाखी का उजियारा ता मिटिया सगल अंधियारा गुर चरणी मन लागा ता जमका मार्ग भागा पयज निरभो पाया ता सहजे कै कर आया पंत नानक बूझे को बिचारी इस जग में करन।

दुट चौकड़ी सदा कूड कमाव है, ना बूझे विचारे निंदा दुष्टी ते किन फल पाया, हर नाक्ष नखे बिदारे प्रहला जान सद हर गुण गावे, हर जीव लय उबारे आस को बो भला कर जान है, मन मुख मत न काई साधु जन की निंदा व्यापे, जसन जन्म गवाई राम नाम कदे चेतै नाही, अंत गए पछताई सफल जन्म भगतां का कीता, गुर सेवा आप लाए सब दे राते सह दे माते, अन दिन हर गुण गाए नानक दास कहे बेनंती, हौ लागा तिन कह पाए। सोरठ महला तीजा, तो सिख सका बंद पहै भाई, जे गुर के

सदवसे तज काम क्रोध अहंकारा। सदा हजूर कविया सब ठाई हृदय नाम अपारा। जो जुग बाणी शब्द पछाणी नाओ मीठा मने प्यारा। सदगुर सेव जे नाम पछाता सफल जन्म जग आया। हार चाख सदा मन तृप्तया गुण गावे गुणी अगाया। कमल प्रगा सदा रंग राता अनखा शब्द बजाया। तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया। राम नाम की गत कोई न बूझे गुरमत हृदय समाई। गुरमुख होवे सो मग पछाणे हर रस रस नरसाई। जब तब संजम सब गुर ते होवे हृदय नाम साई। नानक नाम समाले से जन सोहन दर साचे पद पाई। सोरठ महला तीजा दो तुके सतगुर मिले उल्टी पई भाई जीवत।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले।

तब तप आपे सतगुर आप गए चेला उपदेश करे प्रभ आपे आपे नाउज पाएंदा प्यारा आपे ही जप जापे आपे अमृत आप है प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलांदा प्यारा जन नानक हर स्थापे सोरठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे सौ आपे बणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया हर घर नाम निदान।

आपे शब्द समाहा, आपे लिखण आप लिखारी, आपे लेख लिखाहा। मेरे मन जप राम नाम ओमाहा, आनदन अनद होवे वडभागी, लै गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावर सुंदरा प्यारा, आपे वंश वजाहा।

तुम्हारी गोविंद प्रीत लगी अलप्यारी जब सत्संग पै साधु जान फिर दे मिलिया सांत मुरारी रगाओ तू फिर दे गुप्त बसे दिन राती तेरा भाव ना बुझे गुवारी सगुर पुरख मिलिया प्रपटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास पया सांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सो पाया सत संगत पुरख तुम्हारी पुरखे पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा पई तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सुप्रीत अंतर मन बेदया हर बिन रहन ना जाई जो मछली बिन नीर है बिन सह त्यो नामे बिन मर जाई मेरे प्रभ कृपा जल देवो हर नाई हो अंतर नाम गां दिन राती नामे ही सांत पाई रहाओ जो चातरक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास न जाई गुरमुख जल पावे सो सहजे हरिया पाए सुपाई मनमुख पूले दैत से डोले बिन नावे दुख पाई जन्म मरे फिर जूनी आवे।

जिन घर त्याया सब के तिसका तिसकी भूख गवाई, ऐसा तन दिया सुख दाते निखोट न कब ही जाई, अंध पया सुख सहज समाने सदगुर मेल मिलाई, मन नाम जप नाम आराध अनदिन नाम वखाणी, उपदेश सुन सा संतन का ता चूकी कान जमाणी।

तुम सबसा जे सा जनेवा जे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुनियारे गुण नहीं कोई तुम दान दे मेहरबाना तुम करो भला हम पलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम ए हवाला राग संतन कै

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवां हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखे आप पाई।

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रखाओ ताम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विद जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक को पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो का टायो डेरा अंत मंगल बिसरामा मन बांचित फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम भागा कौ नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चन्नी मन लागा सोरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है सिमरहो हर हर नाम परानी दिल से काची दे अज्ञानी हरहाओ मृत्युना अर स्वप्न मनोरथ ताकि कछ ना वडाई आराम भजन बिन काम न आवस संग न काहू जाई हो करत बिखाए अवरदा जी को काम न कीना धावत धावत न त्रिवतासिया आराम नाम नहीं चीना साध विकार विखे रस मातो असंख खते कर फेरे नानक की प्रा पाए बेनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अवनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिघम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरे गुर मिट्यो परम अंधेरा पाए प्रेम भगत प्रभ नेरा रखाओ हर हर नाम निधानस पिया मंत न रहे अघाई जद कद पूर रहे हो परमेश्वर कत आवे कद जाई जब तब संजम ज्ञान कद बेता जिस मन वसे गोपाला नाम रतंजन गुरमुख पाया ताकि पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काटी जमकी वासा कहो नांग प्रो कृपा तारी।

गुण गावत आराध नाम हर, आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत, संगत साध प्यारी सब बलिहार जाओ प्रभ अपने, जिन पूर्ण पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे, जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नांग प्रभ अपना, हंद से ती कर आया सोरठ महला पंजवा, प्रभ की सारण सगल पैला थे दुख बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी,

कर कृपा अपनो कर लीना। मनव से अविनाशी ताको विघन न को लागे, जो सदगुर अपने रखे चरण कमल बसेर अंतर अमृत हरस जाके। कर सेवा सेव प्रव्यापने जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दाता के बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई। सोरठ महला पनवा माया मोह मगन अंधियार है, देव न

जोश करे सोई सोई जाने रहे न कछुए शानी रखाओ। हे बासवात लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़ दे मह पर दारा संग फक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा ठाक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओट न काई, काढ़ लियो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई गुरपूरे की बाणी। जपंद करो नित प्राणी हर साचा सिमर हो पाई, साध संग सदा।

जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल छीवे। बिघन बिनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अजुत अविनाशी आनंदन हारंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कदा सुहेली, आद अंत मद नानक तो प्रभ होवा बेली। सोरठ महला पंजवा पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी तारी संतो या बतावो कारी। जित हो में गर्भ निवारी रखाओ, सर्व भूत पार ब्रह्म करमानिया होवा सगल रे नारी। देखो प्रभु अपने संगे चूके पीत परमारी, औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखया

ए भीतर ते इनको डारो, अपन निकट बुलाओ, अपनी विद आप जनाव हो, हर जन मंगल गाव हो रखाओ। बिसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पाव हो, गुरपूरा फेट उबड़ पागी, जन नानकते न ताव। सोरठ महला पंजवा, जाके सिमरन सब कुछ पाइये, विरती काल न जाई, तिस प्रत्याग अवर कतरा चो, जो समय रहा सुमाई। हर घर सिमरु संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ। सार संभाले नित प्रतपाले, प्रेम सहित गल लावे, कहो नानक प्रभु तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे।

गुरगोपाल प्रसोई जा की शरण पया सुख पाई है बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सासंग प्राप्त तिन पेट दुर्मद खोई तिन की तूर नानक दास बांछ है जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवार सूका मन साधार है दर्शन पीड़ित होत निहला हर का नाम विचार मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देव है काटे जमकी फंदा रखाओ। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते आपे करने हारा अपना दास हर आ

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नी सहसा चुकाया सिगदारो न पतियाया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब ढूंढन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लभदे अपनी पाई ता कते आवे कद जाई ते साच न्याय नबेरा ऊहा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्वथान को राजा ते अनहर शब्द अगाजा।

बात सवारी, प्रभ अपना बिरध समारिया, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, गुर का सद पयो साखी, तिन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा, तू साहिब गुणी गहेरा, जप नानक नाम सा साखी, अपने दास की पैज राखी, चोरठ महला पंजवा, विधकर्ता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा हुआ, मज्जन गुर अंधा रासे, जप हर हर किल खनासे।

पंजवा पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रही या उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुमारे अपने दास का सुधार खवाला कर कृपा अपने कर रखे मात पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जमका पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वैसे वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण आधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पंजवा गुर पूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा प्रा मिले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंते सगले वल पावो जी कै संग सहाई ही रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइये बौड़ न जोनी पाइये जे देवे पुरख विधाता हर हस्ते नहीं जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवा गुरपूरे कीती पूरी प्रव रव रया पार पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना गुर के चरण कवल तारे बिघन ना लागे तिलका कोई कार्य सगल सुवारे हरहाओ मिल साधु दुर्मत खोए पादत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद ने तगाई है सा संग मिल त्याई है मान बांछित फल पाए गुरपूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दैद सदन मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैन फिर परदेश सिधायो हुण नहीं संदेश रोम आयो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रखाओ क्यों बिसरे यो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदिर चर के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत दिस निकटायो पांबीरी के पाद पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्व को ठाकुर सगरो दुख मिटायो कहो नानक होम में पीत गुर खोई तौ दयार बीठ लो पायो तब रहो अंधेश्वरो मायो जो चाहत सो गुरु मलायो सर्व

कौन कर्म विद्या को कैसी, कर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमर हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध जाहे जपे गद पावे, और तर्मता के सब नाहन हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई, सोरठ महला नाम माई मैं केवद लखो गुसाई, महामो अज्ञान तिमर मो मन रहो उरझाई रहाओ, सागल जन्म परम ही परम खोयो न अस्थिर मद पाई, विख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई, सा संकब हू न कीना न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नाय को गुण राख लिहो सरनाई, सोरठ महला नाम माई मन मेरू बस नागे, निस्बासर विखेन को तावत हे बिदरो को तागे रघाव, वेद पुराण सिमरत के मासुन निमखन ही बसावे, पर थान पर दारा सुमरत्यो बिरथा जन्म सिरावे, मद माया के पयो बाबरो तू तने कस ज्ञाना, कड़गी पीतर बस्त नरंजन ताको मर मना जाना, जब गी शरण साध की आयो दुर्म सगल बिनासी, तब नानक चेत्यो चिंता मान ताटी जम की वासी, सोरठ महला नामा रे नर ये साची जी तार, सगल जगत है जैसे सुबना बिनसद लगत न बार रखाओ, बारू पीत बनाई राजपत रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्जो खां गवार, अजहू समझ कछ बिगड़ो नाहिन ताजले नाम मुरार, कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार, सोरठ महला नामा ए जग मीत ना देखियो कोई, सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहाओ, दारा मीत पूसन बंदी फगरे तन स्यों लागे, जब ही निरतन देखो नरको संग छाड़ सा भागे, कहो का या मन भौरे कहो इन स्यो न्यू लगायो, दीना नाथ सगल पै पंजन जसता को बिसरायो, स्वान पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो, नानक लाज बिरद की रखो नाम तुहारो लीनो, सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश, हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो पीस रखाओ, था छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारत खोयो, कर पर पंज उधर निज पोखयो फस की न्याई सोयो, राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना, उर्ज रहो बिखेन संग बौरा नाम रतन बसराना, रहो चेतना चेत्य गोविंद बिरद आओ सिरानी, हो नान घर बिरद पछानो उल्ले सदा परानी, सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं मान, सुख सुने वर पै नहीं जा कह कंचन माटी मान है रखाओ, नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना, हर्ग सोचते रहे न्यारो नाय मान अपमाना, असा मनसा सगल त्याग।

सहज पियाई। दुबधा विच बैराग न होवी, जब लग दूजी राई, तब जग तेरा तू एको दाता, अवर न दूजा पाई। मानमुख जंत तुसदा निवासी, गुरमुख दे वडियाई, अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीव न पाई। तुन समात महापरमार्थ, तीन पवन पत नामंग, मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामंग, कर्म सुकर्म कराए आपे आपे पवित्र रामंग, मान मुख झूठ लय पैमानंग, आपे ज्ञान आगामंग, जिन चाख से साध जानन, ज्यो गूंगे मिठे आई, अकथे का क्या कथिये पाई, चलो सुधार जाई, गुरदाता मिले तामत होवे, निगुरे मत ना काई, ज्यो चलाए त्यो चले पाई, होर क्या को करे चतराई, एक परम पुलाए एक भगती राते, तेरा खेल अपारा, जित तुद लाए तेगा फल पाया, धुंग चला मनहारा, सेवा करी जे कशोवे अपना, जियो पिंड तुम्हारा, सतगुर मिले है कृपा कीनी, अमृत नाम अधारा। गगन अंतर वास्या गुण परगासया, हुण मैं ज्ञान ते आनंग, नाम मन पावे कह कहावे, तत्तो तत्व खानंग, सतगुर पीरा गैर गंभीरा, बिन सबदे जग बौरानंग, पूरा बैरागी सह सुभागी, सच नानक मन मानंग।

जो गुरकारना कमाए जगत जलंदा डिठमै होमे दूजे पाए नानक गुर सरनाई उबरे सच मन सबद त्याए महला तीजा सबदरते होमे गई तो बावंती नार तिरके पाने सदा चले ता बनया सी गार सेज सुहावी सदा पिर रावे हर वर पाया नार ना हर मरे ना कदे दुख लागे सदा सुहागण नार नानक हर प्रामेल लई गुर के हित प्यार पौड़ी जिन्ना गुर गोप्याय अपना ते नर बुरियारी हर जियो तिनका दर्शन ना करो पापिष्ट हत्यारी ओए कर कर फिर एक शुद्ध मन ज्यो धरकट नारी वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मिल लो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी सलोक महला तीजा गुरसेवा ते सुख उपजे फिर दुख न लगे आए जमन मरना मिट गया काले का किश ना बसाए हर से ती मन रव रहा सच्चे रहा समाए नानक हो बलिहारी तिन कहो जो चलन सतगुर पाए महला तीजा तिन सबदे शुद्ध न हो गई जे अनेक करे सीगार फिर की सार न जाने दूजे पाए प्यार साक शुद्ध साक कुलखणी नानक नारी विच कुनार पौड़ी हर घर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम ते आई हर उचरा हर लाहा लैणी जो जपदे हर हर दिन सरात तिन्हों कुरबैणी जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी हो वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैणी सलोक महला चौथा हर दर्शन स्यो प्रीत है हर दर्शन को मित हर दर्शन के वस है जो जंती कह बस जंत हर के दास हर त्याय दे कर प्रीतम स्यो नेहो कृपा करके सुनो प्रभ सब जग मै वरसे मेहो जो हर दर्शन की उस्तत है सा हर की वडियाई हर अपनी वडियाई पाम दी जनका जयकार कराई सो हर जन नाम त्याय दा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचे तिस बिन रहन न जाई सगुर मिले ता पूरा पाईए हर रस रसन रसाई पौड़ी रहन

ही अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु पागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कथनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई,

ते तोरै तो अपन बेडी आवे हो ऐसो बेडी बन ना साको सब अंतर सब ठाई हो गूंगे महा अमृत रस चाखे पूछे कैन ना जाई हो बेडी के गुण सुन री बाई।

राजा राम को रस जे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पए हम बावर सोच असो दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। सहित आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

पीत पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन होए को पसम की ठेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास चुमारा, चमरटा गांठ न जनई, लोग ठा

सास मास तब जियो तुम्हारा, तुम्हें करा प्यारा। नानक शायर एव कहत है सच्चे पर्वत गारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा, क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वह सोख छिपाइये, पुरब लिखे का लहना। नाम खसम का चेतन किया, कपटी कपड़ कमाना। जाम द्वार जा पढ़ चलाया, ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक, किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया, जीव ते हां मर रही है। तनासरी मोहल्ला पहला, कर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे आओ जीड़ा बिल लाए। फिर जसवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर साथ मिलो मेरी माए। रखाओ वखर नाम देखण कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए। लोग बतीने ना पत होए, ता पत रहे आराखे जा सोए। जै देखा तै रहा समाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए। जे को करे कीते क्या होए, जिसनु बगसे साचा सोए। हुण उठ चलना मोत के ताल, क्या मोह देसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए, बिन नदरी नानक नहीं कोय। तनासरी मोहल्ला तीजा, नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रवे रहे लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे। अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए। हर सुचित लागे तिरकाल ना खाए। रहाओ सच सिमरे होवे प्रगास, ताते बिखिया महे उदास। सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे, जिसका जीव तस आगे तरे। साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगह पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए।

साच रते अहे निस बैराग, क्यों जुग में अमृत साची बाणी, पूरे पाग हर नाम सुमाणी, सिद्ध साधक तरसे सब लोए, पूरे पाग प्राप्त होए, सबके साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए, सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे वेखै आपे सच लाए, तनासरी महला तीजा, नावे की कीमत मित कही न जाए, से जन तन जिन एक नाम लिवलाए, गुरमत साची साचा विचार, आपे बगसे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ, हम मूर्ख मूर्ख मन माहे, होमे विच सवकार कमाहे, गुर प्रसादी होमे जाए, आपे बगसे लए मिलाए, बिखिया का धन बहुत अभमान, अहंकार डूबे ना पावे मान, आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत साला ही सच सोई, आपे साजे करता सोए, तिस बिन दूजा अवर न कोए, जिस

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने। राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरि सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव शेख खट बोले मुख आगर।

पूर्ण होए त्रिवतानी होए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी अलंकार मिलथैली हुई है ताते कनक वखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक निचल कर बांध्यो गुर की ओ बंधानी तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन अर पूमन ताकि कृष्ण ना बूझी लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी बिखिया मैं किनहि त्रिपत न पाई जो पावक ईदन नहीं त्रापै बिन हर

अंधकार में ये सीधा मार्ग दिखाया। हमरे प्राण गोपाल गोविंद ईहा ऊहा सर्व थोग की जिसे हमारी चिंद रहाओ। जाके सिमरन तर बिनधाना मान महत पद पूरी नाम लैद कोड़ अगनस भक्त बाचे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेव एक निधाना पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी तिमृत पार पराना शीतल सांत महा सुख पाया। संत संग रहे ओला हर तन संचन हर नाम पूजन त्यो नारक कीनो चोला तना।

पाते वो मन छूटे बिरस जाए परमाई अंधरूप रवे उसा मध्य जल कद पेख हो जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतत पामन गोसाई पोर सुख आनंद विराज पाए मुक्ते निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु के मन पाई नाम जपत तिसना सा बुझी है नानक त्रिपत अघाई तना श्री महला पंजवा जिन कीने वसे अपने त्रै गुण पावन चतर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या यो जंत विचारा प्रभु की ओढ़ गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याल तब हुटो अरहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोहे ओ डीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सबके लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किसी वाद काड़ किसी पै सगले लर लर मुआ ओम बलिगारी सतगुरे अपने जिन यो चलत दिखाया गूजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन

दुतिया पाओ निवार, बंधन काढ लेओ अपने कार, कभू न आवे हार। तेरी शरण पया हो जीवा, तू सुमरथ पुरख मेहरबान, आठ पहर प्रभु को आराधी, नानक सद कुरबान। राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हा हा प्रभ राख ले हो, हम ते किशु न होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देहो। हराओ अगर कुटुंब सागर संसार, परम मोह अज्ञान अंधार, ऊंच नीच सुख दुख, त्रास नाही तिसना भूख, मन बासना रज बिखे ब्याद, पांच दूध संग महा असाद, जी जहान प्राण तन तेरा, नानक जान सदा हर नेरा। तनासरी महला पंजवा, दीन दर्द निवार ठाकुर, राखे जन की आप, तरन तारण हर निध, दुख न सके ब्याप। साधु संग भजो गोपाल, आन संजम कृष्णा सूझे, ए जतन काट कल काल। रहाओ आद अंत दयाल पूर्ण, तिस बिना नहीं कोए, जन्म मरण निवार हर जप, सिमर स्वामी सोए। वेद सिमरत कथे सासत, भगत करे विचार, मुक्त पाईगे साध संगत, बिरस जाए अंधार। चरण कमल आधार जन का, रस पूंजी एक, तान मान दीवान साचा, नानक की प्रवटेक। तनासरी महला पंजवा, फिरत फिरत पेटे जन साधु, पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे, हर हर नाम ते आया। ताते मोय तारी ओढ़ गोपाल, शरण परयो पूर्ण परमेश्वर, बिनसे सगल जंजाल। रहाव सुर्ग मृत पयाल भूमंडल, सगल ब्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल तारन, हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाइए, पाइगे सर्ब निधन।

पर प्रसाद छोड़ जाए से करे पराल, कामन आवे से जंजाल, संग न चाले तिन संहित, जो बैराई से ही मीत, ऐसे परम पुले संसारा, जन्म पदार्थ खोए गुवारा, रहाव ताज तर्म नहीं पावे डीठा, तूड़ तो सो रच्यो मीठा, ताद प्यारी विसरिया दा तारा, जाने ना ही मरण विचारा, वस्त पराई को उठ रोवे, कर्म तर्म सगलाई खोवे, हुक्म ना बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछोताणे, जो तु पावे सो प्रवान, तेरे पाने नू कुर्बान, नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहे प्रा मेरा, तनासरी महला पंजवा, मुए मसकीन प्राव नाम आधार, खाटन को हर हर रोजगार, संचन को हर एको नाम, हल्त पलतता के आवे काम, नाम रते प्रव रंग अपार, साध गावे गुण एक निरंकार, रहाव साध की शोभा आत्मसकीनी, संत वडाई हर जसकीनी, आंध संतन कै भगत गोविंद, सूग संतन कै बिनसी चिंद, कै साध संतन होवे अकत्र, ते हर्ज गावे नाद कवत, सा सभा में अंध विश्राम, उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम, तुय कर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहा गुणतास, प्रभ दयाल कृपाल हजूर, नानक जीवे संता तूर, तनासरी महला पंजवा, तो कद डरे जे खसम समारे।

मार दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनाश्री महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय संचाई नाम निध रिध सिद्ध हर लागर ही जन पाई संतन को आनंद सगल ही जाई गृह बहार ठाकुर भगतन का हराबरिया सर्वठाई रखाओ ताको कोई ना पहुंचे नखारा जाके अंग कुसवाई जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम त्याई तनासरी महला पंजवा दर्भवंत दर्ब देख गर्भ पूंवंत अभमानी राजा जाने सगल राज हमारा त्यो हरजन टेक स्वामी जे को अपने ओट समारे जैसा बित तैसा होए वर्त अपना बल नहीं हारे हरहाव आन त्याग पै इक आसर शरण शरण कर आए संत अनुग्रह पै बन निर्मल नानक हर गुण गाए तनासरी महला पंजवा जाको हारंग लागो इस जुग में तो कई तगै सूरा आत्म जिने सगल वसता के जाका सदगुर पूरा ठाकुर गाई गे आत्म रंग।

चरण गए प्रव्यापने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी मृत न आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी सागत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़ अंग नान प्रकाड साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी

मोह रहाव सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपन निकट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोड़ सुख विश्राम गोबिंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यान्त प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर।

अगन प्रव्याप बुझाई, नानक उदरे प्रव शरणाई। तन्हा श्री महला पंजवा। तृप्त भई सज भोजन खाया, मन तरसना नाम थे आया। जीवना हर जीवना, जीवन हर जप साध संग रखाओ। अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए, अनदन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ आस असवारी, हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण त्याया, हर सुख निधान नानक दास पाया। तन्हा श्री महला पंजवा, गुर के चरण जी का निस्तारा। समुंद

तीर्थ नहाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल ना मन कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल आश्रम कीने मनुआ ने पतीने विवेकहीन देही तोय कोई पाइये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोय कर्म धर्म जुगता निमखना हित करता गर्भ गर्भ पड़े तही ना लेख पेटिए सबल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेख महड़ जो कमावे तिल ना लेख पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखेदाई प्रभ की कथा सुनाई ते पेटे गद होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेट्यो निर्भय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल।

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा ही साचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय ए बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विखला दे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभु सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी पिर कर सोहे नार।

तना श्री भगत रविदास जी की एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अपतियार क्या कीजे पचनी तोर मोर मन मन जन को पूर्ण दीजे हौ बल बल जाओ रमैया कारण कारण कमन अबोल अरहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधो यो जन्म तुम्हारे लेखे तह रविदास हास लग जीवो किरपयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो सरवन बाणी तुजस पूर राखो मन सुमद कर करो चरण हिरदे धरो रसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोविंद सिंह जिन कटे मैं तो मोल महगी लई जी सटे परहाओ सा संत बिना पाव नहीं उपजे पाविन भगत नहीं होए तेरी तय रविदास एक बेनती हरस्यो पैज रखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मोरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे अरहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो ताजते नाम ले तुझे कोचारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माए पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पमन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तुही चबर ठोलारे दस अठा अड़सठ चारे कानी एह वर्तन गए सगल संसारे कहे रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे।

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी बिन गाक मी का काखा। रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिका नोन लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। अरहाओ मानमुख कोठी अज्ञान अंधेर तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमु एगा वारी माया पुयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के हर साधु शरण हमाराखा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तों वड़ अगवड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा हम बार कछु ना जाने गत मित तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना। हर कृपा तार दीजे मत ऊतम कर लीजे मुग्ध सयाना। मेरा मन आलसिया उगुरहाना। हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन कर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। तार कीर्त जस अगम अथाह, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम।

जप जगदीत जपो मन माहा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम, जैत

आपे सतगुर समुंद मथाहा आपे मथ मत तत कढ़ाए जप नाम रतन ओ महाराम सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हर घर पगदड़ी मन भाई हर घर नाम ओ महाराम आपे वड़दाना वड़साह गुरमुख पूंजी नाम सहा हर घर दाद करो प्रभावे गुण नानक नाम ओ महाराम जैत सरी महला चौथा मेल सत्संगत संग गोराहा पूंजी नाम गुरमुख वे साहा हर घर कृपा तार मधुसूदन मिल सत्संग ओ महाराम हर गुण बाणी शर्म सुनाहा हर कृपा सदगुरु मिलाहा गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप ओ महाराम तब तीर्थ वक्त जग पुन तुलाहा हर घर नाम ना पुजे पुजाहा हर घर अतुल तोल अदपारी गुरमत जप ओ महाराम तब कर्म तर्म घर नाम जपाहा किल विख मैल पाव तो वाहा दीन दयाल हो जने ऊपर जो नानक नाम ओ महाराम जैत सरी महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जगमीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे ताकी निर्मल रीत रखाओ माता पिता बंता सुत बंधव

इष्टमीत अर पाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाई, मुक्त माल तनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बेहानी अवधे, ता मैं संतोख न पाया, हस्त रथ असव पम तेज तनी फूमन चतुरंगा, पंगना चलो इन मैं कछुए ऊड़ सिधायो नांगा, हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइये, नानकी हां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाइये, जैत सरी महला पंजवा घर तीजा दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद दियो संदेसरो कहियो प्रे कहियो, विष्णु भई मैं बुबद सुनते कहो सुहागन सही यो रघाओ, को कह तो सब बहार बहार को कह तो सा महियो, वरना दिसे चिन्ह लखिए सुहागन सात बुझियो, सर्व निवासी कड़कड़वासी लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहे तो सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो, जैत सरी।

मनसा पूरव जब प्रभ कहो गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबहू चूरव बुझ प्रभ कहो जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा सजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कर कर तसे बसेरा अरहाओ दुख आराधन दुख आराधन बिसरे ना काहू बेरा नाम जगत कोड सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग तेरे ओ सागर पावक को जो संत फेटे वड़ भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान धरा त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव माया करा रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा नाव रूप पयो सल संग पंध पार परा आप्यो पियो गातियो परमा को नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जा को पहे गोविंद सहाई दुख सहज आनंद सगल स्यों वा को व्याध न काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी

आतृक चितवत बरसत मेह कृपा सुन करना प्रवतारो हर प्रेम भगत को नेह हरहाओ आनक सूह चकवी नहीं चाहत अंध पूर्ण पेख देह आन उपावना जीवित मीना मिल जर मरना तेह हम अनाथ नाथर सरणी अपनी कृपा करेह चरण कमल नानक आराध्य इस बिन आन ना केह जय सरी महला पंजवा मन तन बसर हे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग फेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत पहन न जाई कुदरत कमन हमारी लाए लय लड़ दाजन अपने उदरे उदर नहारे प्र सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण दुआरे जयत सरी महला पंजवा आए अनक जन्म प्रसरणी उदर दे अंध कूबते लाभो अपनी चरणी हरहाओ ज्ञान त्यांख कर्म न जाना नाहिन निर्मल करणी सा संत के अंचल लावो दिख मन दी जाए तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नी मन में तरणी हर दर्शन तृप्त नांग दास पावत हर नाम रंग अपरणी जयत सरी महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अबदा निकट न आवे पूर्ण दास के काम रखाओ कोट विघ्न मिरसे हर सेवा नेचर गोविंद ताम भगवंत भगत को पौकुश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करणी तोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हिरदे गो नानक सुख समूह बिसराम जयत सरी महला नामा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लाल चलग तेह ते आप बंधायो रहाओ समझना परि बिखे रस रचयो जिस हर को बिसरायो पंग स्वामी सो जान्यो नाहिन पर खोजन को तायो रतन राम कटही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन बेन बिरथा जन्म गवायो जयत सरी महला नामा हारजू राख लियो पत मेरी जम को त्रास पयो और अंतर शरण गही कृपा न तेरी अरहाओ महापतत मुग्ध लोभी फोन करत पाप अभारा पय मरबे को विसरत नाहन ते चिंता तन जारा कियो पाप मुद के कारण तेज को उठताया कटही भीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया नाहिन गुण नाहिन का जप तप कौन कर्म अब कीजे नानक हार पर शरणागत अपहे दान प्रव दीजे जयत श्री महला नामा मान रहे साचा गो बिचारा आराम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ जाको जोगी खोज तहारे पायो नाहे ते पारा तो स्वामी तुम निट पछानो रूप रेख ते न्यारा पाम नाम जगत में हर को कभू नाए संभारा नानक शरण पर्यो जग बंधन राखो बिरद तुहारा जयत सरी

इड़तन रूपहीन किज साक न सिन्ना राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभो एसो प्रसन्ना तलोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसनं रचत मूड अज्ञान अंध नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हावरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो नानक नाम विहूनिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने से तीचित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस पोक जागत पखलाया आर जा कई वेहाय तंदे ताया पूर्ण पय ना काम मोया माया क्या वे चारा जंत जा आप उराया सलोक संत स्वर्ग लोक है जिद ते प्रथमी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण कौतक कोड़ तमाशे चेतन आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सदकर जानिया।

नाद कुरंग के बेदया सनम उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलंग सास सास आराधन नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजावे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभावे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कब हो चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरी है कोई पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामंग सर्वणंग सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सद बलिहारंग जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच से पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रामत्था हर्ज लिखे बेअंत सोह है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था संता संग उधार अगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद करणंग आ रमणंग संजोग पूर्ण है गोपाल दस पेटंग सबल नांग सो मुहूर्त कीव न सका पाए सुख मिति हु बारे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई तो मूर्त पला संयोग है जित मिले गुसाई आड़ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड़े पाग सत्संग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है तरण सूर भगवान है जे पंत नानक हर हर हरे छड़ो हबे आप लगड़ो चरणा पास नटड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदिया पौड़ी मेल लेहो दयाल तय पय द्वारिया रख ले वो दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत विशल तेरा बिरद हार पत उधारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मोह सारिया कर गए लेहो दयाल सागर संसारिया श्लोक संत उदरण दयालंग आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संसंगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल तीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओढ़ उधरे सगल जान सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवे मूल संत्या नाम तान संत जनासु संग पाइये वड़े पुन आड़ पैर हर चाहे हार जस निरसुन श्लोक दया करणंग दुखरणंग उच्चरणंग नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिवत न माया पाए बलंदड़ी बुल गई रखंदड़ो।

जपेही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोर देखन को दर्शन प्रभ नीत पाठ काट तो सत्संग मोर मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद पाए मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवां प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही रहते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत तारो प्रमान आड़ परसना गुण गावे जद पूर अगावे समरथ कान तेरी शरण जीन के दाते

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटंतर के पाप सब खोवे। हर भवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस्त कछ नजर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो साहु सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्ध लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा हर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर। इस जन कौ करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाएगे हर जप। नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा। जप माना

माया माए समाणी इन्नी बाती सो पाई गे नाही भई कामण एयाणी जाए पुछो सुहागणी वाहे किन्नी बाती सो पाई है जो कुछ करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइए जा के प्रेम पदार्थ पाईए तौ चरणी चित लाईए सौ कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परमल लाईए एव कह सुहागणी पैणे किन्नी बाती सो पाईए आप गवाईगे ता सो पाईगे और कैसी चतराई सौ नदर कर देख सो दिन लिख कामण नौ निध पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती अहे निस पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप चक।

बाद तब आए हो मुख समाहो हुक्म सा वर्तनी सच साहेब सचा खेल सब हर तनी साल आए हो सच सब ऊपर हर तनी जिस नाही कोई शरीक किस लेखे हो गनी अरहाव पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर घर बनी।

रूप गुण निदान गोविंद अनूप सेमर सेमर सेमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए जिन जपया तिस को बलिहार तिस के संग तरे संस

मनहार अगम अगाध ऊच अपार जो तो सेवै तिन पौ दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिसे सो तेरा।

सुमावे, सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे। तिलंग महला चौथा, हर किया कथा कहानिया गुरमीत सुनाइया, बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया। आए मिल गुरसिख आए मिल।

जो गुरमुख प्यारा सेवंदे तेन हर फल पावे, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना जी प्रवनाले, ओए जप जप प्यारा जीवंदे हर नाम समाले, जिन गुरमुख प्यारा सेवया तिन कौ कुम जाया, ओए आशटे परवार स्यों सब जगत छड़ाया, गुर प्यारे हर सेवया गुर तन गुर तन्नो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुन्नो, जो गुर सिख गुर सेवंदे से पुन पराणी, जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुरबाणी, गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाईया।

अहंकार चेतना है तो चेतल है, निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औद विहात है, फूटे कर जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, अजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दिल उपजिया संग ही, सो पी संग न होया रहाओ, मात पिता सुध बंद जा हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्योहार है जको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कयो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो, जान बूझ के बावरे ते काज बिगारयो, पाप करत सुगत्यो नहीं न गर्भ निवारयो, जे बिद गुर उपदेसया

फल पाया सह के अमृत बोला नानक कहे सहेली हो सौखरा प्यारा हम सह केरियां दासियां साचा खसम हमारा सूही महला पहला जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी दुखी करे पसाओ दुख विसार सी सहसा मूले नाहे तर पर तार सी तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाओ देवै दिखिया चल है सतगुर पाए पवे ना पीखिया जाको मैल हजूर दूजे नवे किस तर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस छुट्टे ताके बोल साहेब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मते कोए कहे उसारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जोत पावसी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी ए द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगे पाए सी जेहे कर्म कुमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाव आप वरताए सी।

ढूंढ ढूंढाई, सत संगत मिलहारस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई। सूफी महला चौथा, हर कृपा करे मन हर अंग लाए, गुरमुख हर का नाम सुमाए, हर अंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ। हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मानमुख मुग्ध नरको राहोय। जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सूफी महला चौथा, जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सहे सुमाए। हर राजन चाखो जे पाई, तौ कत अंध साध लो भाई, हरहाओ गुरमत रस राखो उरतार। हर रस राते रंग मुरार, मानमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे। सूफी महला चौथा, तार छेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद नी जाहर जपतया, उत्तम पदवी पाए। पूछो बिदर दासी सुत, किसन उतरिया कार जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दूह फूह सब ले जाए। अरहाव अरवदास चुमार उस्तद करे, हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पए पगयाए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोभ शीपा कहे बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका, मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए। जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूफी महला चौथा, तिनी अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा। जिनकी वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। अरहाव तोर भगत जिना कौ बख्सया, हर अमृत पद पंडारा। मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोकारा। से भगत से सेवका, जिन्ना घर नाम प्यारा। इनकी सेवा ते घर पाई है, सिर निंदक कै पवे शारा। जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा। चौ पीढ़ी आद जुगाद, विखीली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूफी महला चौथा, जिथे घर आरा दिए, तिथे घर मित सहाई। गुर कृपा ते घर मन वसे, होर तबित लया न जाई। हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत घर होए सखाई। अरहाव सह संगति संघर तन खटिए, होर ते होर तो पाए। हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया। हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये। वा के हर तन लया न जाई, हर तन रतन जवे हर मानक। हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिवलाई। हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। हलत पलत हर तने की, भगता को मिली वडियाई। हर तन निरपौ सदा सदा, अस्तिर है साचा।

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुखराता, कहो नानक प्रभ बिनो सुनीज, उचर कठोर

काम को ऊढ़ खलोया, नाम की बेला पै पैसोया, अवसर अपना बुझे ना ए आना, माया मोर अंग लपटाना, अरहाओ लोभ लहर को बिरस फूल बैठा, साजना का दर्शना डीठा, कहू ना समझे अज्ञान गवारा, भौर भौर लपट्यो जंजारा, अरहाओ दिखे नाद कर्ण सुन पीना, हार जस सुनत आसमान कीना, दिखत नाही रे पेघत अंधे, तोड़ जाए झूठे सब तंदे, अरहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करीजे, तार कृपा मुझे सा संग दीजे, तौ कुछ पाइये जो हो ये रेना, जिसे बुझाए इस नाम

करै अरदास विसर नाही पूर्ण गुणतास सूही महला पंजवा मीत साजन सुध बंदब पाई जद कद पेखो हर संग सहाई जात मेरी पत मेरी तन हर नाम सूग सहज आनंद विश्राम रहाओ पार ब्रह्म जब पैर सनाहा कोड आबद तिस बेद तनाह हर चरण सरण गढ़कोट हमारे काल कंटक जम तिसना बिदार नानक दास सदा बलिहारी सेवक संत राजा राम मुरारी सूही महला पंजवा गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा आनंद विनोद

नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर बिरसिया जे रच लोभाए सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए सूही महला पंजवां।

पंजवां रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रख्यो पासारा अरहाव बोबिद रूप रंग आपारा पेखे खुशी भोग नहीं हारा सब रस लयत बस्त निरारा वर्ण चेन नाही मुख नामा सारा कहन न जाई खेल तुआरा नान करेन संत चरनारा सूही महला पंजवां तौ में आया सरनी आया।

सेवक कौ पौ किश नाही, जम नहीं आवे नेरे। रहाओ जो तेरे रंग रते स्वामी, इनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सदगुर का दिलासा। नाम त्यायन सुख बल पायन, आड़ पैर आराध है। तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्टले सद है। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कलरा की मेरी। सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया। रखो रखनहारे, जित तू लावे तित हम लागे। क्या ए जंत विचारे, मेरे राम जी तू प्रवेंतर जामी। कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी। अरहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है। आप त्या होइए सब रेणा, जीवतियां इं मरिए। सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नव जापे। सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जे दया करे प्रवे आपे। दीन दयाल किरपाल प्रभु स्वामी, तेरी शरण दयाला। कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साधर वाला। राग सूही अष्टपदियां, महला पहला कर पहला। एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

पावई दुख ही महे पचन हौम में मैला जल फिर मरजम में वारो वार पय किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सराही सच मान दर सचे सत्यार गुर पूरे पूरी मत है अहेरस नाम ते आए हौमे मेरा।

सुर्ग अवतार माया तंदया सोदत सोदत सोद तत दी चारिया ना बिना सुख नाहे सर पर हारिया आवे जाए अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सावाद जोनी परम ते जिनको पय दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोजे कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आ

तुद अंतर हों सुख वसा, तू अंतर सा बास जीओ, पाणे तखत वडाइया, पाणे भीख उदास जीओ, पाणे थाल सिर सर्व है, कामर फुले आकाश जीओ, पाणे पवजल लंगी है, पाणे मंज परियास जीओ, पाणे सो सो रंगला, शिवतरता गुणतास जीओ, पाणे सौ पीहावला, हौ आवण जान मुइयास जीओ, तू सौ अगम अतोलवा, हौ कह कह टह पैयास जीओ, क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन पूह प्यास जीओ, गुरसबदी सौ पाया, सच नानक की अरदास जीओ, सूही महला पंजवा, गुणवंती जो दिसे गुर सिखड़ा, तेस निव निवला गोपाए जीओ, आखां बिरता जी की गुर सज्जन दे मिलाए जीओ, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मान अंत न काहू जाए जीओ, इहो मरताए कूंडे वसा, मैं मार्ग द्यो बताए जीओ, हौ आया दूर हौ चल कै, मैं तक्की तौ सरणाए जीओ, मैं आसा रखी चित मैं, मेरा सबो दुख गवाए जीओ, इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सो कार कमाए जीओ, त्यागे मन की मतड़ी,

मन चाओ कन्हेरा सुन प्रा मेरा, मैं तेरा परवस। दर्शन देख पई ने केवल, जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया पाए सुभाए। नानक साजन कौ बल जाइए, साच मिले कर आए। कर आएड़े साजना ता तन करी सरसी राम, हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम। गुण संग रहंसी खरी सरसी, जां रवि रंग राते। अवगुण मार गुणी कर छाया, पूरे पुरख विधाते। तस्कर मारवसी पंचायण, अदल करे विचारे। नानक राम नाम निस्तार, गुरमत मिले प्यारे। वार पाएड़ा बालड़िए, आस्था मनसा पूरी राम। तिर रावेड़ी शब्द रली, रव रहया न दूरी राम। प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई, तिसकी नार सबाई। आपे रसिया आपे रावे, ज्यो ते दी वड्याई। अमर अडोल अमोल अपारा, गुरपूरे सच पाई है। नानक आपे जोग संजोगी, नदर करे लिवलाई है। फिर उचड़िए माड़िए, त्यो लोआ सिरता जा राम। हाँ विष्णु पई देह गुणा, अनहद शब्द अगा जा राम। शब्द विचारी करनी सारी, राम नाम निशानू।

प्रसोई, गुर की कार करे तन बालड़िए, हर वर दे मिलाए राम, हर के रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम, मिल प्रीतम सुख पाए, सच सुमाए, सच वरते सब थाई, सच्चा सीगार करे दिन राती, कामन सच सुमाई, हर सुखदाता शब्द पछाता, कामन लया कंठ लाए, नानक महली महल पछाणे।

पाई परम गद पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तननाठी पाखंड परम गवाया हौ में पीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जीओ अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जीओ कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे वेण सतगुर मगना पाया उजड़ पंथ प्रमे गावारी खिन खिन तक्के खाया आपे दया करे प्रवदाता सदगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के विछड़े जन्म मेले नानक सहज सुपाए आया लगन गणाए हिरदे तन ओ

मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल।

नदर प्रभु सत्संग हर मंगल रस रसन रसाय नारक नाम प्रगस अंतरतन बीचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभ कह सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभ काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया गुरमुख अर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे कर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रहे रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर न जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रभ अंतर जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाई है सह समाई है तेस बिन अवर ना कोई।

पूरधया काट काट अविनाशी थान थनन तरसाई को नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई सूही महला पंजवां कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी।

गुरमुखे सदकरणी सारी बिनसे प्रम पे झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर में नवनिध परे भंडारा।

सावड पागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने कहो नानक रवे रंग राते प्रेम महारस पीने आनंद विनोद पय न सहिए।

दय दिस पूर रहे आज स्वामी कीमत कहन न जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अचल नीव रखाई ज्ञान त्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा ने सुनिए राम अणगल चोज भगत पा पंजन अणगल वाजे तुनिए राम अणगल चुनकारे तत् विचारे संत गोष्ट नित होवे हर नाम अरद है मैल सब कट है किल बग सगले खोवे ऐ जन्म न मरना आमन जाना बौर न पाइये जोनिए नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद इश पुनिए सूही महला पंजवां संतां के कार्ज आप खलोया हर कम करावन आया राम धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साध कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जग अंतर लाते सगल वसूरे पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नव निध सिद्रत दीने करते ओट न आवे काई राम खात खर्चत बिलशित सुख पाया।

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सू विगे सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ।

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सतपुरमान सदा निचल रव रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमुखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका भीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पाचड़िए सहोर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या

मुए अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुए निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे तां कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए।

आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही चरना। अरगाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आप पे अवगत आप संगरचना। कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसु करत जन्म।

संतन पगराल उगत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल प्राम पै राखो मोहते कट हो जमजाल बिनो करो करना पते।

लोड़े सो करे कुछ बिन कछ नाहे प्रताप तुम्हारा देख कै जम दूत छड जाहे तुमरी कृपा ते छूटिए बिन से अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरदेव रघाव खोजत खोजत खोजया नामे बिन कूर जीवन सुख सब साध संग ब्राह्मण सापूर जित जित लाभ हो तित तित लगे स्यानप सब जाली जत कत तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली तब के तुम ते मांगना वडभागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए बिलावल महला पंजवा साध संगत कहे बास बै कलम सब नसना प्रभ से तीरंग रातिया ताते गर्भना ग्रसना नाम कहे गोविंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल होई है गुर का जब जपना रखाओ हर अचागत त्रापया मान रस लय हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बेगसना शीतल सांत संतोख होए सा बूझी तृष्णा दैध तावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारी राखिया पय प्रसना नाम निधान नान सुखी पेख साध दर्शना बलावल मुहला पंजवा पानी पखा तीस दास कै तब होहे निहाल राज मिलक सिकदारिया अग्नि मै जाल संत जना का शोरा ते चरणी लाग माया तारी छद्रपात तिन छोडो त्याग रखाओ संतन का दाना रूखा तो सर्बनधान गृह सागत तो क्षति प्रकार ते बिहू समान भगत जिना का लूगरा ओढ़ नगन न होई सागत सिर पाओ रेशमी पैरत पद खोई सागत स्यों मुख जोरे अद विचों टूटे हर जन की सेवा जो करे एक उतै छूटे साग किश तुम ही ते हुआ आप बंत बनाई दर्शन पीड़त साधका नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा श्रमनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश धर हर नाम ते आवो

अंध कुब मैं गलत थे ताडे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेटत होवत सुगी जी दान देन रखाओ परा पूर्वला लिखया मिलया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए पै बिन से त्यो लोग के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल मुहला पनवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरे सो प्रचित आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रखाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन में थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रताप पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुबने का सुबना पया संग चलिया कमाया करण कारण समरथ प्रभ तेरी शरणाई हर दिन सरायण नानक जपे साध सदबल जाई बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए शीस कर पग पखलाओ बार जाओ लख बेरिया दस पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभते पाओ दियो सूनी साध के बीजन ठो लावो रखाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लाव वारस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लाव उठत बैठत जपो नाम क्यों कर्म कमावो नानक की प्रा बेनती हर शरण समाओ बिलावल मुहला पंजवा इहो सागर सोई तरह जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वस वडभागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रखाओ आगन सागर ते काढ़या प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पए सखाई जन्म मरण दुख काटया तो का थान पाया काटी सिलक प्रम हो की अपने प्राप आया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल मुहला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ हुआ कृपाल दीन दयाल प्रपार ब्रह्म

रोग रगाव औगद हर का नाम है जित रोग ना व्यापे साध संग मन तन हित फिर दुख ना जापे हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु सरनाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवां पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए सांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिसे फेटिया ताके सुख परवेश।

जी जंत सो प्रसन्न भए देख प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चित निवत रहे गुर शब्द अखूट।

राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार। शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवा सिमर सिमर पूर्ण प्रभु, कार्ज पैरास करतारपुर करता वसै, संतन कै पास रखाओ बिघन न को लागता। गुर पै अरदास रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास तोट न आवे कदे मूल। पूर्ण पंडार चरण कवन मन तन बसे, प्रभ पगम अपार बस्त कमावत सब सुखी। किश ऊन ना दिस संत प्रसाद पेटे प्रभु, पूर्ण जगदीश है। जय जयकार सभे करे सच थान सोह, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवा हर हर हर आराधिये, होइए आरोग रामचंद की लश्त का जिन मारिया रोग। रखाव गुर पूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कै वारणे मिलया संयोग। जे सिमरत सुख पाईए बिन से बियोग, नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर पंजवा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद अवर उपास सत्या।

को नास चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुण तास कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रहाओ मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास बिलावल मोहल्ला पंजवा सर्ब सिद्ध हर

खोए खोई हो, मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए, भगत वशल कृपाए,

कहो नानक ऊचो ऊचा बलावल महला पंजवा बिन हर कामना आवत हे जा सो राच माज तुम लागे मोह मोहनी मोहावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने मैं जावत हे उर जरे इंद्री रस प्रेरे हो बिखे ठगोरी कावत हे तिरण को मंदर साज सवार हो पावक तले जरावत हे ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मोड़ पर ठाडे केस गए फेरावत हे दिटन आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत हे जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी जूफा हावत हे कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत हे बिलावल महला पंजवा हार हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान तंबोली रखाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जोवड़ पागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मोली कहो नानक प्रेरवी सुहागन आतनी की मेरी बनी खटोली।

पर पावे केहत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज भयाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होमन तौरा अनहोमन मीठा दिखिया मैं लबटाए जरे। अंध कूप मैं परे हो प्राणी परम गुबार मुंह बंद परे। कहो नानक प्रभुत दयारा गुर पीटे काढ़े वहां भरे। बिलावल महला पंजवा मन तरसना हर चीना पय आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुरदीना रहाओ। यानप तेसा पई सियानप रा मेरा दाना बीना। हा दे राखे अपने कहो कहू न करते कश खीना। बल जाओ दर्शन साधु के जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोस कहू न मान्यो मन छीना। बिलावल मोहला पंजवा गुर पूरे मेरी रख लई। अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म।

सेमर सेमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते ऊपर को नाही। बिलावल मोहल्ला पंजवां। सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कछ दुख ना व्यापै, आगे दरगे पूर्ण काम रहाओ, आप त्याग परिये ने सरणी, गुरते पाएगे इहो निदान, जन्म मरण की कटिए फांसी, ताची दरगे का निशान, जो तुम करो सोई फल मानो, मन ते छूटे सगल गुमान, कहो नानक ताकी सरणाई, जा का किया सगल जहान। बिलावल मोहल्ला पंजवां। मान तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर वकार नित, तिस रसना का मोल किश नाही रहाओ, कोल समूह उदरे खिन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अंध सेती बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के बोहित पाए, और सागर पार पराही, संत सेव भगत हरता के, नानक मन लागा है ताही। बिलावल मोहल्ला पंजवां। तीरो देख तुम्हारे रंगा, तुही स्वामी अंतर जामी, तुही वसे साध के संगा रहाओ, खिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीर कीड़

आयो आप अपने सेवक की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

मूला नसो प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को आकत कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवां हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवां राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत सगल समग्री पोखण परण थान तनंतर सर्व नरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

दूत धुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बीचारियो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे घर की जया। बिलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिख्या राता स्वान जैसे। औद विहावत अदक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संग तरमन जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए। जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अभमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महानुज अजान अज्ञानी रखे तार दए। कहो नानक गुरपुरा फिट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे ता मेरी आस पुन्नी रगाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मोयो अंध तुनी उपजो चाओ मिलन प्रीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि अंधले टेक निर्थन तन पायो। प्रभ नानक अनक गुणी

रूप त्याभो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायोरी। मोहन रूप दिखावे आमोय नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज सुमानी मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायोरी अरहाओ दूजा बिलावन महला पंजवा मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे राचो नाथ की सहाई संतना आव चरण गहे रहाओ आहे मन अवरना भावे चरणावे चरणावे उलझ्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे एके हर लाहे अनते टूटिए रिखते छूटिए मान हरस कूटिए संग साधु उल्टिए अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे। राग बिलावल महला नावा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुखरता हर नाम पछानो अजामल गण का जे सिमरत मुक्त पय जी जानो। रघाव गज की त्रास मिट्टी छिन्हू मैं जब ही राम बखानो नारद कैत सुंद त्रु बारक भजन माए लबटानो अचल अमर निरपय पद पायो जगत जाए हैरानो। नानक कहत भगत रशक हर निकट ताए तुम मानो बिलावल महला नामा हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सहसा न चूके गुर ए पेद बतावे। रघाव कहां पयो तीर्थ व्रत किए आराम सर नहीं आवे जोग जग निफलते मानो जो प्रजस बसरावे।

नानका नाम ते आए। दीनानाथ दयाल मेरे स्वामी, दीनानाथ दयाल जाचो संतरवाल रखाओ। संसार विखिया कूप ताम अज्ञान मोहत कूप, गए पूजा प्रभ जी ले हो। हर नाम अपना देहु प्रभ तुझ बिना नहीं चाहो, नानका बल बल जाओ। लोभ मोहे बादी देहे, बिन भजन होवत खेहे। जमदूत महापयान चित गुप्त कर्म है जान, देन रैन साथ सुनाए। नानका हर शरणाए, पय पंजना मुरार कर दया पतत उधार। मेरे दोख गने ना जाहे, हर बिना कते समाहे। गए ओट चितवी नाथ नानका दे रख हाथ, हर गुण दे गोपाल सर्व कड़ प्रतपाल। मन प्री दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस, एक निमख रहन ना जाए वड़पाग नानक पाए। प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर। जो मीन जल सुवेत आल कमल पिन ना पेत, जो चकवी सूरज आस नानक चरण प्यास। जो तरन परत परान जो लोभिये तन दान, जो दूध जले संजोग जो मां खुदिया रस भोग। जो माद पूते हेत हर सिमर नानक नेत, ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हिरत निसंग। मैगले कामे बंद ज्यो ग्रस्त बखई तंद, ज्यो जुआर बिसन ना जाए हर नानक इहो मन लाए। कुरंक न देने हो चात्रक चाहत में हो, जन जीवना सत्संग गोविंद भजना रंग। रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान, गुण गाए सुन लिख दे तो सर्व फल हर ले। उल समूह करत उधार संसार उतर सपार, हर चरण भोजित ताहे मिल साध संग जस गाहे। हर पैज रखे मुरार हर नानक शरण द्वार।

मानन मान वंजाई है हर चरणी लागो राम तोड़ श्याम चातरी दुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पो शरणाई राम राय फिर होए सुहागो राम तो प्रभ तज कद लागी है जिस बिन मर जाय गे राम लाज न आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाई गे राम पतत पावन प्रभ त्याग करे हो कत ठहराई गे राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाए गे राम श्री गोपाल ना उच्चर है बल गई है दो चार नरसन आराम प्रभ भगत वशल ने सेव ही ताया काक ग्रसना राम प्रमो ही दुख ना जान ही पुड़जो नी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसना राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा होमे बिख त्यागन राम ईत ऊत न डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जे प्रपाया अपना ता अटल सुहागन राम बिलावल महला पंजवा हर खो जोवड़ पागियो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सदगावीए पार ब्रह्म के रंगे राम तो प्रसद ही सेविए पाइगे फल मंगे राम नानक प्रसरणागति जब अंत तरंगे राम एक तल प्रभु ना विसरै जिन सब कुछ दीना राम वड़पागी मेलावड़ा गुरमु पिरचीना राम बहां पगड़ तमते काढ़िया कर अपना लीना राम नाम जबत नानक जीवे।

तू सर्व व्यापी तुम समसर नहीं दयाल मोहे समसर पापी बिलावल नेत उठ कोरी गागर अन्न लीप्त जियो गयो ताना बाना कछु ना सूझे हार हर रस लपटो हमारे कुल कौने राम कहो जब की माला लई निपूते तब ते सुख ना पयो रखाओ सुनो जिठानी सुनो दरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए क्यों मुंडिया क्यों नाम होयो सर्व सुखा का एक कर स्वामी तो गुरु राम दयो संत प्रहलाद की पैज न राखी हर नाश नख बिदरयो करके देव किदर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहेत कबीर सगल पाप खंडन संत है लय उधरयो बिलावल को हर समान नहीं राजा ए पूबत सब दिस चार के झूठे करत दिवाजा रखाओ तेरो जन होए सोए कद डोले तीन पवन पर साजा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा।

राख ले हो हम ते बिगरी, सील तर्म जा भगत न कीनी, हों अभमान टेढ़ पगरी रहाओ। आमर जान संची एक आया, ए मिथ्या काची गगरी, जिने नवाज साझम किए, इसे बसार अवर लगरी, तंदक तोये साध नहीं कई हो, तन परे तुमरी पगरी, कहे कबीर ए बिनती सुनियो, मत का लहो जमकी खबरी बिलावल, दर मादे ठाडे दरबार, उज मिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार रखाओ, तुम तन तनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनियत तो जस तुमार, मांगो कहे रंग सब देखो, तुम ही ते मेरो निस्तार, जय देव नामा बेप सुदामा, इनको कृपा पई है अपार। कहे कबीर तुम समर्थ दाते, चार पदार्थ देत ना बार बिलावल, डंडा मुंद्रा खिंथा आधारी, प्रम के पाए पवे पिहतारी, आसन पवन दूर कर बवरे, छोड़ कपट नित हर पज बवरे रघाओ, जे तू जाच है तू तिर पवन भोगी, कह कबीर के सौ जग जोगी बिलावल। इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बिसारे, किंचित प्रीत न उपजे जन को, जन कहां करे बेचारे रघाओ, त्रिग तान त्रिग तान, त्रिग ए माया, त्रिग त्रिग मत बुध फन्नी, इस माया को दृढ़ कर रखो, बंदे आप चन्नी, क्या खेती क्या लेवा देई, परपंच चूड़ गुमाना, कहे कबीर ते अंत बगूते, आया काल निदाना बिलावल, शरीर सरोवर पीतरे, आछे कमल अनूप, परम जोत पर खोतमो, जा के रेखना रूप, रे मन हर पाय प्रम तजो, जग जीवन राम रखाओ, आवत कछु ना दिसई, न दिसे जात, जय पूजे बिनसे तही, जैसे पुरवन पात, मिथ्या कर माया तजी, तो सहज विचार, कहे कबीर सेवा करो, मन मंज मुरार बिलावल, जन्म मरण का प्रम गया, गोविंद लागी, जीवत सुन समानिया, गुरसाखी जागी रखाओ, कासी ते तुन उबजे, तुन कासी जाई, कासी फूटी पणता, तुन कहां समाई, त्रिकुटी संद मैं पेखिया, काटू कर जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी, कट माए ते आगी, आपे आप ते जानिया, तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया, गोविंद मन माना, बिलावल चरण कमल जाके हृदय बसे, सो जन क्यों डोले देव, मानो सब सुख नौन दिता के, सहज सहज बोले देव रखाव, तावे माजो सब मैं पेखे, कुटल गांड जब खुले देव, बारंग बार माया ते अटके, ले नरजा मन तोले देव, जय ओ जाए तही सुख पावे, माया तासना चूले देव, कहे कबीर मेरे।

लूट लेहे सागत पद खोवे सात जना पगमल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

मिटे हर नाय, दुख बिन से सो कीनो ठाओ। जप जप अमृत नाम अघाय, संत प्रसाद सगल फल पाए। राम जपत जन पार परे, जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ। गुर के चरण हृदय उर तारे।

मार गर्भ में अगन्ना जोग है, काम क्रोध लोभ मोह ना पोग है, साध संग जप पे निरंकार, निंदक कह मोह लागे शार, राम कवच दास का सुनाहो, दो दुष्ट त्रिपो तनाहे, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरण आए, जो जो शरण पया हर राय,

राम रतन तस्से मन आए, सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निट कर जान। पाए भगत प्रभु कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच वापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गोंड अष्टपदियां, महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सबल मूर्त

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उज्जल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

जो जुगतार उपजो ज्ञान हुआ परगास पर कृपा लीने कीटदास कौरवदास अब तिसना चूकी जब मुकंद सेवा ताहू की गोंड

कैसे तरह सर पर जानो नरक ही परै रहाओ। जे ओ ग्रहण करे कुल खेत अरपे नार सीगार समेत सगली सिमरत सरवनी सुने करे निंद कमने नहीं गुने। जे ओ अनक प्रसाद करावे भूम दान सोभा मंडप पावे अपना बिगार बेरा ना संड करे निंद बो जो नी हंड। निंदा कहा करो संसारा निंदक का प्रगट पाहारा निंदक सोध साध विचारिया कौ रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली महल।

मैं मानक लाला, तुम देव उत्ते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव जे नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मद बांसुरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुहा नाचे, आने कुगर साजा, राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सासी गारी रखाओ, आखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पनम चूला करत अकेला, जलते उपत हुआ, पांच तत कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दो जरे

गर्भ परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूतला बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे टूका तृप्त न पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गुर कीते बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसन हुआ नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जप्या नाथ दिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पनवा करन करा मनसोई आन ना दिसे कोई ठाकुर मेरा सूढ़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे घर समीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम पीत अमर पहे ने काम तन मन शीतल अग्नि निवारी अंधरू प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब कुछ तेरा सब बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हौ तेरा तू मैं मन मूठा राम कली महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप निवारी जिस गुर कहो सद बलिहारी ताज मारे पूरे सदगुर बाजे अनघ तूरे सदगुर रहाओ महिमा जाकी गैर गंभीर होए निहार देज तीर जाके बंधन काटे राय सो नर भौर न जो नहीं पाए जाके अंतर पलट्यो आप ताको नाही दुख संताप ला रतन से पाले परया फिर कुटम ओ जन ले तरया ना ज परम न दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जल का देखो आप दयाल कहो नानक प्रा मिले रसाल राम कली महला पनवा कंते छुटकी अपनी तारी प्रभु की आज्ञा लगी प्यारी जो कुछ करे सो मन मेरे मीठा ता यो अजद नयन डीठा हम ओ जानी रे मेरी गई बलाए बुझगी तिस निवारी ममता गुर पूरे लियो समझाए रखाओ कर कृपा राख्यो गुर सरना गुर पकराए हर के चरना बीस बिसवे जामन ठहराने गुर पार ब्रह्म एक ही जाने जो जो किन्नो हम तिसके दास प्रा मेरे को सगल निवास ना को दूत नहीं बैराई गल मिल चाले एक पाई जा को गुरहर

चलना, राच रहो तू संग सुपना रहाओ, बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जूबन लागा दुर्गंध, तृती व्यवस्था संचे माय, बिरध पया छोड़ चलो पछताए, किरण काल पाई दुर्लभ देहे, नाम बिहूनी होई खेहे, पशु प्रेत मुद ते बुरी, इसे ना बूझे जेन ए श्री।

अंत की बार ऊठ सिधारे ना बिना सब चूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते ते सा माया मूठ परानी रखाओ तीर्थ नाये न उतर समायल कर्म धर्म सब हो में फैल लोक बिचारे गत नहीं होए ना बिहूने चल सहे रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे रख हो आप सगल सुखा प्र तुम रे हाथ जित लाभ तित लागे स्वामी नानक साहेब अंतर जामी राम कली महला पंजवा जो कुछ करे तोई सुख जाना मन असमझ सा संगपति आना डोलन ते चूका ठहराया सत महे ले सत समाया दूह गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरख का संग पया रहाओ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला जय राखे सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम अड़सठ तीर्थ जय साध भगत है तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है सर्व आनंद जब दर्शन पाइये राम गुणा नित नित घर गाये।

रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमक हृदय बस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीर्ज मद पूरा तेज समाद तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद आरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उत्तर।

पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होए निर्मल जियो, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन घर भगत नहीं छुटकारा, सुहर भजन साध कै संग, मंतन रापे हर कै रंग, तोड सियाणप बहु चतराई, मन बिरहर नावे जाए ना काई, दया धारी गोविंद गुसाई, हर घर नानक टेक टकाई, राम करी महला पंजवा, संत कै संग राम रंकेल, आगे जमस्यो हुए ना मेल, अंगबुद का पया विनाश, दुर्मत

अभागे तय लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर न चेत्यो मन माही रखाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी सागत की बेद नयन हो डीठी ऊड़ कपट अहंकारी जाना नाम सुनत जन बिशु डसाना माया कारण सदगी चू है मान मुख कभे न उस्त करे निरपो निरंकार दातार तिसु प्रीतन करे गवार सब सहा सिर साचा साहु।

संग पवजल तरिगे प्रभ कई रंग देही तोय न उतरै मैल होमे व्यापे दुबदा फैल हार हर औखद जो जन खाए ताका रोग सगल मिट जाए

पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याय पूरा जिस कर्म तरन तरन प्रते रो नाओ एका शरण गही मन मेरे तुद बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ। जप जप जीवा

होए वडियाई, अंत की बेला लय छाई, आराम के गुण गाओ, हलत पलत होए दोवे सुहेले, अचरज पुरख तिहाओ रहाओ, उठत बैठत हर जाप, बिनसे सगल संताप, बैरी सब होवे मीत, निर्मल तेरा होवे चीत, सब ते उत्तम यो कर्म, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर सिमरन तेरा होए उधार, जन्म जन्म का उतरे पार, पूर्ण तेरी होवे आस, जम की कटिए तेरी फास, गुर का उपदेश सुनीजे, नानक सुख सहज समीजे।

सागर तरियो बाशर खोज खेद न पायो नए पुनरोज सिंध समायो कट के माहे करण हार कहो किस अज जनाहे जो छूटो तो जाए पयाल जो कढ़ो तो नजर निहाल पाप पुन हमारे बस नाहे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली मोहल्ला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे बेअपिया तोहे उदम करे गाडर ज्यो शेल अचिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साज तना रहाओ ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध मद सदगी चूरे करे विकार जीरे के ताई गाफल संगनत हुआ जाई तरत तो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाग सिर छाने जिन दिया तसे न चेते मूल मितया लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जब पए दयाल जो मन हुआ साधरवाल हस्त कमल लड़ली नू लाए नानक साचे सास समाए राम कली मोहल्ला पंजवा राजा राम की शरणाए निरपो पए गोविंद गुण गाव साध संग दुख जाए रखाओ जाके राम बसे मन माही तुझन दुत्र पेखत नाही सगले कासवारे अपने हर हर नाम रसनित जपने जिसके मस्तक हाल गुर तरे तो दास अंदेशा काहे करे जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुर ऊपर कुर्बान गुर परमेश्वर पेट निहाल तो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिक्र पा करे साध संग सो पव जल तरे अमृत पीवो साध प्यारे मोख उजल साते दरबारे अंध करो ताज सगल विकार नानक हर जप उतर हो पार राम कली मोहल्ला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागे माटी को जल दहदिस जागे ऊपर चरण तले आकाश कड़मे सिंध कियो परगास ऐसा समर्थ हर जीव आप निमकन बिसरे जी भगतन कै आठ पैर मन

जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस पो किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तान तान देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुहेत वधाए, की नाम सार है परम गया, रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, उन दान इसनान ना संजम, सास दिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारियो, आवत जावत जन्म गया, जा जमताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुर शब्द न गत पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करें टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हम में रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आवद देखे, सागत मान अब महान भया, जिसका इहो तान तान सो पर लेवे, अंतर से साधु पया, अंतकाल किस साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोव है किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, देख कुटांब मायाग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जा आए ता तने पठाए, क्याले तने बुलाए लया, क्यों कुछ करना सो कर रहया, बक्सन हारे बक्स लया, जिन तो चाख्या राम रसायन, तिरकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भगत पया, आप मार गुरमुख कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी मोहल्ला पहला, जत स संजम साज दृढ़ाया, सा सद रहीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिव लागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगनपुर दृढ़ समय सार, अनहत शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन पर पुरलीना, जेवा रंग रसीना, मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना, एक मैं सर्व सर्व मैं एका, ए सब गुर देख दिखाई, जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, तो प्रभ लखन ना जाई, दीपक ते दीपक परगासया, तिर पवन जो दिखाई, सच्चे तख्त सच महली बैठे, निरपो ताड़ी लाई, मोहे गया बैरागी जोगी, काड़ काड़ किंगरी वाई, नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सुखाई, राम कली मोहल्ला पहला, औ हठ हस मड़ी करशाया, तारण गगन कल तारी, गुरम केती शब्द उधारी, संतो रखाओ, ममता मार ओ में सुख, तिर पवन जो तुम्हारी, मनसा मार मने मैं राखे, सतगुर शब्द विचारी, सिंगी सुरत अनाह दवाजे, फड़कड़ जोत तुम्हारी, पर पांच बेण तई मन राखिया, ब्रह्म अग्न पर जारी, पांच तत् मिल ऐर्ज दीव, निर्मल ज्योत पारी, रस लौके इव तन किंगुरी, वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी मैं आसन औदू, अलख अगम अपारी, काया नगरी इव मन राजा, पांच वसे विचारी, शब्द रवे आसन कर राजा, अदल करे गुणकारी, काल विकाल कहे कहे बपरे, जीव तुआ मन मारी, ब्रह्मा विष्ण महेश एक मूर्त, आपे करता कारी, ताया सो तरे पवसागर, आत्म तत् विचारी, गुर सेवा ते सदा सो पाया, अंतर शब्द रव्या गुणकारी, आपे मेल लय गुणदाता, होमे तृष्णा मारी, त्रै गुण मेटे चौथे वर्त, एहा भगत निरारी, गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने, हृदय एक मोरारी, मनवा अस्थिर शब्द राता, एहा करणी सारी, वेद बादरा पाखंड औदू, गुरमुख शब्द विचारी, गुरमुख जो कुमावे औदू, जत सत शब्द विचारी, शब्द मरे मन मारे औदू, जो जूत विचारी, माया मोह भवज लख अवदू, सब तरह कुलतारी, सब सूरज उचारे औदू, बाणी भगत विचारी, यो मन माया मोहया औदू, निरसे शब्द विचारी, आपे बगसे मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी, राम कली मोहल्ला तीजा, अष्टपदिया एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा, कन्नी पाए जोगी, खिंता कर तू दया, आमन जान विपूत लाए जोगी, ता तीन पवन जिन लाया, ऐसी किंगरी बजाए जोगी, जित किंगरी अनहद वाजे, हर सिंह रहे लिवलाए, रहाओ ससंतोख पद कर चोली जोगी, अमृत ना पुत पाई, क्या कागर डंडा जोगी,
سنگھی سرت وجائی مان درڑ کر آسن بیس جوگی

दोए पत लाए जोगी, यो शरीर का डंडी, गुरमुख होवे ता तंती वाजे, इन वेद तिसना खंडी। हुकम बूझे तो जोगी कहिए, एक स्यो चित लाए, सहसा टूटे निर्मल होवे, जो जूते पाए, नदरी आमदा सब कुछ बिन से, हर से ती चित लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागे, ता एसो जी पाए, यो जोग ना होवे जोगी, जे कुटम छोड़ पर पवन करे, गृह शरीर में हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्राप लह, यो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, जिसमें रोग वड्डा तिस नाम आया, अनेक जतन पे करे जोगी, रोग न जाए गवाया, हर का नाम औखद है जोगी, जिसनु मन नमसाए, गुरमुख होवे सोई बूझे, जोग जुगत सो पाए, जोगे का मार्ग विखम है जोगी, जिसनु नदर करे सो पाए, अंतर बार एको वेखे, विचो परम चुकाए, विण वजाई किंगरी वाजे जोगी, सा किंगरी वजाए, कहे नानक मुक्त होवे जोगी, साचे रह समाए, राम कली महला तीजा, भगत खजाना गुरमुख जाता, सगुर बूझ बुझाई, संतो गुरमुख दे वड्याई, रहाओ सच रहो सदा सहस उपजे, काम क्रोध विचों जाई, आव छोड़ ना मिलन लागी, ममता सब जलाई, जिते उपजे तिसते बिनसे, अंते नाम सकाई, सदा हजूर दूर न देखो, रचना जे नरचाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर, सच्चे सिंह लवलाई, सत संगत मै नाम निर्मोल, वडे भाग पाया जाई, परम ना भूलो सतगुर सेवो, मन राखो इकठाई, बिन नावे सा भूली फिरदी, बिरथा जन्म गवाई, जोगी जुत गवाई हंडे, पाखंड जोग ना पाई, शिव नगरी में आसन बैसे, गुर शब्दी जोग पाई, तातर बाजी शब्द निवारे, नाम से मन आई, यो शरीर सर्व रखे संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई, त्रैगुण अचेत नाम चेते नाही, बिनावे बिन सजाई, ब्रह्मा बिशन महेश त्रै मूर्त, त्रैगुण परम भुलाई, गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटे, चौथे पद लिवलाई, पंडित पढ़े पढ़वाद वखाने, तिना बूझ ना पाई, बिखिया माते परम भुलाए, उपदेश कहे किस पाई, भव जना की उत्तम बाणी, जुग जुग रही समाई, बाणी लागे सोगत पाए, शब्दे सच समाई, काया नगरी शब्दे खोजे, नाम नवंग निध पाई, मनसा मार मन सह समाना, बिनस उस्त कराई, लोयन देख रहे विस्मादी, चित अधिष्ट लगाई, अधिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मलाई, हाँ गुर सलाई सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई, नानक एक कहे बेनंती, नावो गत पद पाई, राम कली महला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रखाओ, हर बिन सब कुछ मैला संतो, क्याहो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाणा मन नमसाई, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा था ए पाई, पवित्र पावन हे जन साचे, एक शब्द लिवलाई, बिन नावे होर पूज न होई, परम पुली लोकाई, गुरमुख आप शाने संतो, राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी था ए पाई, पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मललाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन नमसाई, पाणे ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई, अपना आप ना पछाणे संतो, ऊड़ करे वड्याई, पाखंड कीने जमनी छोड़े, ले जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप छाणे, गत मित तिन ही पाई, यो मनुआ सुन समाध लगावे, जो तीजोत मलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सत संगत मेलाई, गुरमंग गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई, ताची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिव लाई, पए पंजन अद पाप नखंजन, मेरा प्रभ अंत सखाई, सब कुछ आपे आप वर्त, नानक नाम वड्याई, राम कली महला तीजा, हम कुचल कुचील आत अभमानी, मिल शब्दे मेल उतारी, संतो गुरमुख नाम निस्तारी, सच्चा नाम से आकट अंतर, करते आप सवारी रखाओ, पारस परसे फिर पारस होए, हर जीव अपनी कृपा तारी, एक पेह करे फिर अभमानी, दिन जुए बाजी गारी, एक अंदन भगत करे दिन राती, राम नाम उरतारी, अंदन राते सहजे माते, है देहो में मारी,
पै बिन भगत न होई कभी, पै पाए भगत सवारी, माया मोह शब्द जलाया, ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता, आपे बख्श पंडारी, तिस क्या गुणा का अंत न पाया, हौ गामा शब्द विचारी, हरजू जपी हरजू सालाही, विचो आप निवारी, ना पदार्थ गुर ते पाया, अखुट सते पंडारी, अपने भगता नु आपे तुठा, अपनी कृपा कर कल धारी, तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गामन शब्द विचारी, जियो पिंड सब किश वे तुसका, आखण बिगम बिचारी, शब्द लगे सही जन इस तरे, भौजल पार उतारी, बिन घर साचे को पार न पावे, बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सो ही पाया, मिर हार शब्द सवारी, ताया कंचन शब्द राती, साचे नाए प्यारी, ताया अमृत रही पर पूरे, पाएगे शब्द विचारी, जो प्रभ खोजे सही पावे, और फूट मुए अंकारी, बादी बिन से सेप सेवे, गुर के हेत प्यारी, सो जोगी तत् ज्ञान विचारे, हमे तिस नाम मारी, सगुर दाता तने पिछाता, जिसनु कृपा तुम्हारी, सगुर ना सेव है माया लागे, डूब मुए अंकारी, जिचर अंदर सास चित्र सेवा की जय, जाए मिल गए राम मुरारी, अन दिन जागत रहे दिन राती, आपने प्रेपीत प्यारी, तन मनवारी वार कुमाई, अपने गुर बिट्टो बलिहारी, माया मोह बिन सजाएगा, उबरे शब्द विचारी, आज गाए सही जागे, गुर के शब्द विचारी, नानक सही मुए, जे नाम ना चेत, फल जीवे विचारी, राम करी मोहल्ला तीजा, नाम खजाना गुर ते पाया, तृप्त रहे आगाई, संतो गुरमुख मुक्त गल पाई, एक नाम से आकट अंतर, पूरे की वडियाई रखाव, आपे करता आपे पुता, देंदा रिजक सवाई, जो कुछ करना सो करया, अवर न करना जाई, आपे साजे सिर चुपाए, सिर सिर कंधे लाई, इस सिरे भो तां सुख पाव, सतगुर मेल मलाई, अपना आप आप उपाए, अलख न लखना जाई, आपे मार जी वाले आपे, जिसनु तिल ना तुमाई, एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई, छेबड़ पागी जिनी एक को जाता, सत्य रहे समाई, आप स्वरूप से आना आपे, कीमत कहन न जाई, आपे दुख पाए अंतर, आपे परम फुलाई, वड्डा दाता गुरमुख जाता, निगुरी अंध फिरे लोकाई, जिनी चाखिया तिना साल आया, सगुर बूझ बुझाई, एक ना ना वो आप फुलाए, एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा साला है हो संतो, जिदी वड्डी वडे आई, जिसमें अवर न कोई राजा, कर्त पावस बंट मनाई, न्यौत से कह सा साचा, विरले हु मनाई, इसनु प्राणी सदा त्याव हो, जिन गुरमुख बंट बनाई, सगुर पेटे सोजन सीजे, जिस हृदय नाम साई, सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्मात, मेरा प्रभ रविया सर्वथाई, राम कली महला पंजवा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन्ही किया प्रवृत्त पसारा, किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल पोयंगम साधे, मोहे दीन हार हर आराधे, तेरा भरोसा प्यारे, आ ना जा ना वेसा, रहाओ किन्ही ग्रियो तय बणखण पाया, किन्ही मोन अधूस सदाया, होई कहतो आनन पहोती, मोहे दीन हर हर ओढ़ लीती, किन्ही कया हो तीर्थवासी, कोई अन तज पया उदासी, किन्ही पौन सब धरती करया, मोए दीन हर हर दर परया, किन्ही कया मैं कुले बड़े आई, किन्ही कया बाब उपाई, कोई कहे मैं तरे पसारा, मोए दीन हर हर आधारा, किन्ही कुगर नृत कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोए दीन हर हर हर चाया, किन्ही सिद्ध बो चेटक लाए, किन्ही पीघ बो थाट बनाए, किन्ही तंत मंत बो खेवा, मोए दीन हर हर हर सेवा, कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहस्यो मंडत, कोई करे आचार सुपरणी, मोए दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म तर्म जुग सोधे, बिन नावे ओ मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साह संग पाया, बूझी तिसना महा सीत लाया, राम कली महला पंजवा, इस पानी पे जिंतु करया, माटी काले दिहोरा करया, उगत जोत ले सुरत परीखया, माद गर्भ में जिन तू राखया, राखन हार समार जना।

सगल जोन मैं तू सिर तरिया अब तू सीज पावे नी सीजे कार्ज सबरे मन प्रव त्याई जे ईगा ऊहा एक ओही जद का देखिए तत तत ओही ते सेवत मन आस करे जिस विसरे एक निमक न सरे हम अपराधी निर्गुनियारे ना के सेवा ना करुमारे गुर बोहत वड पागी मिलया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली मोहल्ला पंजवा ताऊ बिहावे रंग रस रूप ताऊ बिहावे माए बापूत ताऊ बिहावे राज मिलक वापारा संत बिहावे हर नाम आधारा रचना साज बनी सबका एक तनी रहाओ ताऊ बिहावे बेद अरबात ताऊ बिहावे

नित नित मंगल सुनिए। राम कली मोहल्ला पंजवा, हर हर त्याय मना खिन नाम सारिये। राम रामा राम रमा कंठ उतारिये, उतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो। भय दूर करता पाप हरता, दुसे दुख पाव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो, गुण गोविंद विचारिये। बिनवंत नानक मिल संग साधु, दिन सरैन चितारिये। चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिर्ख पंडार नाम अनंत तरा। नाम नरहर निदान जिनकै, रस भोग एक नारायणा। रस रूप रंग अनंत बीठल, सास सास त्यायना। केल खरना ना पुने चरना, ना जमकी त्रास सारा। बिनवंत नानक राह जन की, चरण कमल है आसरा। गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जानई, देख चलत दयाल सुन भगत वखानई। जी जंत सब तो त्यावे, पुरख पद परमेश्वरा। सर्व जाचक एक दाता, करना मैं जगदीशरा। साधु संत सुजान सोई, जिसे प्रभु जी मानई। बिनवंत नानक करो कृपा, सोए तुझे पिछानई।

आठ पैर अपना प्रभ सिमरै, एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रतरे पवजल, रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन, प्रलगा मीठा पाना, सब इश कुन्नी आस पूरी, मिले सदगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले, फिर नाही दुख बसूरिया। राम कली मोहल्ला पंजवा शांत, सलोक चरण कमल शरणागति, अंत मंगल गुण गाम, नान प्रभ आराधिये, विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण, सिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये, जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे, एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सफागे, सर्व गुण जगदीसरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी, पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते, प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुही, बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की, गोविंद संकट मोच, शंत पय संकट काटे, नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए, प्रभ दीनानाथ प्रदपाल जियो, प्रदपाल अचुत पुरख एको, तिसे स्यो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तिसका, तन जोबन तन माल जियो, सा सदा बल जाए नानक, सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक सदन उतरे हर हरे, गुण गोविंद वखियान, नांग पगड़ी टेक एक, परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को, अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे, आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे, फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण, फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम ओक, मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे, नानक लिखिया माथ शंत, सगल इश मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो, अंध पयावड पागी हो, गृह प्रगटे प्रभ आए जियो, गृह लाल आए पूर्व कुमाए, तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता, कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो, बल जाए नानक सदा करते, सब मैं रहा समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, राणा चुंजनड़ा गाओ सखी, हरेक त्याव हो, सतगुर तुम सेव सखी,

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुण रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मानमुख खोया गुरमुख लादा सतगुरु मिले अंधेरा जाए नानक हो में।

कथिय ले सुन कहां करवासो ज्ञान की मुद्रा कमन कथिय ले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जिलाई अले क्यों निरभो कर जाइए सह संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर के शब्द होमे बिख मारे ता निरकर हो वे वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे समाई एस शब्द को जो

दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रगास्थिया जीवित मरे ता सब कुछ सूझे अंतर जाने सर्वदया नानक ताको मिले वडाई आप पछाणे सर्व जिया सच उपजे सच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौण पया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बगसलया एका बेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरया तो बुझे जिस आप बुझाए गुर कै सबसो मुक्त पया नानक तारे तारण हारा होमे दूजा पर हरिया मनमुख फूले जम की कान पर कर जो है हाने हान।

कर बस्तौ पवन अनुरागी। रूप ना रेखया जात न होती तौ अकुलीन रहतौ शब्द सोसार। गौन गगन जब तबे न होतौ तिर पवन जोत आपे निरंकार। वर्ण पेख अस रूप सो एको एको शब्द विडाणी। साथ बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी। केत केत बिद जग उपजे पुरखा केत केत दुख बिन सजाई। होमे विज जग उपजे पुरखा नाम विसरे दुख पाई। गुरमुख होवे सो ज्ञान तत् विचारे। होमे शब्द जलाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी। साते रहे सुमाए नामे नाम रहे बैरागी। सच रखिया उर तारे नानक बिन नावे जो कदे ना होवे। देखो हृदय विचारे गुरमुख साज शब्द विचारे कोए। गुरमुख सत बाणी प्रगट होए गुरमुख मन पीजे विरला बूझे कोए। गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणे। गुरमुख नानक एको जाने बिन सतगुर सेवे जोग न होई। बिन सतगुर भेटे मुक्त न होई। बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए। बिन सतगुर भेटे महा दुख पाए। बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गुबार। नानक बिन गुरमुआ जन्म हार। गुरमुख मन जीता होमे मार। गुरमुख साज रखिया उर तार। गुरमुख जा जीता जम काल मार विदार। गुरमुख दर गए न आवे हार। गुरमुख मेल मिलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणे। शब्दे कन बेड़ा सुन तू औदू बिन नावे जोग न होई। नामे राते अन दिन माते नामे ते सुख होई। नामे ही ते सब प्रगट होवे नामे सोजी पाई। बिन नावे पेख करे बो तेरे सच्चे आप खुवाई। सतगुर ते नाम पाई गए औदू जोग जुगत ता होई। कर विचार मन देखो नानक बिन नावे मुक्त न होई। तेरी गत मत तू है जाने क्या को आख वखाणे। तू आपे गुप्ता आपे प्रगट आपे सब रंग माणे। साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोज फिरे फुरमाणे। मांगे नाम पाए पिखिया तेरे दर्शन को कुर्बाणे। अवनासी प्रभ खेल रचाया गुरमुख सोजी होई। नानक सब जुग आपे वरत दूजा अवर ना कोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आराम कली की वार। महला तीजा जोद वीर पूर्वाणी की तुनी। श्लोक महला तीजा सतगुर सहजे दा खेत है। जिसनु लाए पाओ नाओ बीजे नाओ उगवे। नामे रहे समाए होमे एहो बीज है। सहसा गया विलाए नाग बीजे ना उगवे। जो बक्से सोखाए अंबे सेती अंबर लिया। बौड़ न निकसया जाए नानक गुरमुख चलत है। वेखो लोक आए लोक के वेखे बपड़ा। जिसनु सोजी नाहे जिस वेखा ले सो वेखे। जिस वसया मन माहे महला तीजा। मनमुख दुख का खेत है। दुख बीजे दुख खाए दुख ज जमे दुख मरे। होमे करत विखाए आवन जान न सुजई। अंधा अंध कमाए जो देवे तिसे न जानई। दिते को लपटाए नानक पूर्व लिखिया कमावना। अवर न करना जाए महला तीजा। सतगुर मिले सदा सुख जिसनु आपे मिले सोए। सुख एव विवेक है अंतर निर्मल होए। अज्ञान का परम कटिए ज्ञान प्राप्त होए। नारग एको नदरी आया जय देखा ते सोए पौड़ी। सच्चे तख्त चाय

बैसन को जाई तब से आपे आप है गुर शब्द सुनाई आपे कुदरत साजियन कर मैल सराई चंद सूरद चानने पूरी बंत बनाई आपे वेखे सुने आप गुर शब्द ते आई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई हरहाओ श्लोक कबीर मेहंदी करके घालिया।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मद कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलिया, एक देव रात मुरारी, महला पंजवां, ताही मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराधमान, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया,

मन तन हृदय सिमर हर आड़ पैर गुण गाओ उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा ए सुआओ जन पदार्थ सबर होए मन में लायो पाओ सूग सहज आनंद कणा प्रभ जपत्या दुख जाए नानक नाम जपत सुख उपजे।

तिस दर्द निवारणो, जितु उठा चित तिस कदे न हारणो, जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारणो, जिसनु लाए सच तिस सच संभालणो, जिस आया हथ निधान तुरया पालणो, जिसनु इको रंग भगत सो जानणो, ओ सबना की रेण बिरही चारणो, सब तेरे चोज विड़ान सब तेरा कारणो। श्लोक महला पंजवा। उस पे निंदा नानक जी, मैं हब मजाई छोड़िया हब किस त्यागी।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी भाव भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवागमन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपन तरनाही दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत बछल पै।

ले गगन मझारं वेदियले चक्कर पुहंगा पेटियले राय निसंगा टूकियले मोह मयास सद कीनो सूर गेरास जाब कुंभक परपुर लीना ते बाजे अनहद बीना भगते बाक शब्द सुनाया सुनते सुर मन बसाया कर करता उतस पारं कहे कबीरा सारं चंद सूरज द ज्योत स्वरूप ज्योति।

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ ना पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पार सह न परसे, देव संसे गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रघा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे नानासी, कौरव दास सबे नी समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संग तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहां नरंजन रमैया होए रघाओ, देव सताने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेयो, पेटे तास परम गुरुदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर धाती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गहे, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री

पच्छम फेर चढ़ावे सूर, अजर जरै सो निजर चरै, जग नास्यो गोष्ठ करै, चौमुख दीवा जोत द्वार, पलु अंत मूल विचकार, सर्व कला ले आपे रहे, मन मानक रत्ना मैं गोह, मस्तक पद्म द्वाले मणि, महे निरंजन तिर पवन तनी, पंच शब्द निर्मायल बाजे, तुल के चावर संख कन गाजे, दल मलदे तो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाते तेरा नाम, राग नट नारायण महला चौथा, एक ओंकार सत नाम, करता पुरख निरपौ निरवैर।

रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाया, सुन सुन नाम तुहारो जियो। ईगा ऊगा हर तुम ही यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तीयो। साध संग नानक परगासियो।

सदगुर ज्ञान मज्जन गय नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे पारस न परस फय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत तबला किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कडे पनगारे। सागत से मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन बिछुआ जो डसिए तज सागत पर परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद।

साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो सब तृष्णा पूख निवारे। पते पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंच पूत सब लगे देही और सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गद पावो सत संगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बो नाचे, जब उनमें कान कन हारे। सागत को अमृत बो सिंचो, सब डाल फूल विस्कारे, ज्यो ज्यो निवे सागत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डे बिखकारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले परे पुकारे, संत संत मिले मन विसे, जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान खलक है, हलके सबे बिगारे, मेरे ठाकुर कह दीवान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग लय मारे। राख राख राख प्रा मेरे, मैं राखो कृपा तारे, नानक मैं तर अवर न काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक राख।

प्रसाद हर समर्थ की सरना जीव पिंड तनरास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवने का मूल रब रया सरबत ठाई।

कोय, पूरे या सगल मंडल एक स्वामी सोय, करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ, माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बेन बाजे, मदर मदर तुन अनहत गाजे, रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन कृष्ण ओढ़े कामली।

तेरा नाम त्याय तिनको सद मिले। बाबा मैं कर्महीन कूड़ियार नाम न पाया तेरा, अंधा परम फूला मन मेरा रखाव। साद कीते दुख पर फोड़े पूर्व लिखे माए, सो थोड़े दुख अगले दुखे दुख विखाए। विछड़िया का क्या विछड़े मिलिया का क्या मेल, साहेब सो साल आईये जिन कर देख्या खेल। संजोगी में लावड़ा इन तन कीते पोग, वे योगी में विछड़े नानक पी संजोग। मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लिख लखाया लिख दात जोत वड़ियाई। मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मान ताहे कर से माना, उठ चलना खस में पाना रहाओ। ताज साध सहज सुख होई कर छड़ने रहे न कोई, किस खाजे किस तर जाइये ये बहुड़ दुनिया आइये। सदकाया पट हंडाए फुरमायस बहुत चलाए, कर से सुखाली सोवे हथी पौंदी काहे रोवे। कर कुमन वाणी पाई पा पत्थर तरन न जाई, बहु बेड़ा जी हो चढ़ाऊ कहो नानक देवे काहू। मारू महला पहला कर पहला करणी कागद मन मसवाणी, बुरा पला दुए लेख पाए ज्यों ज्यों किरत चलाए। त्यों चलिए तौ गुण नाही अंत हरे,

खाए तापी सन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जब तरह तेरा नाओ, लून खरामी नान कलाला, बगसे तुद बड़े आई, आद जुगाद दया पद दाता, तुद विन मुक्त न पाई, मारू मोहल्ला पहला, कोई आखे पूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, भया देवाना साका नानक बौराना, हों हर बिन अवर न जाना रखाओ, तौ देवाना जानिए या पै देवाना होए, एक ही साहेब बारा दूजा अवर न जाने कोए।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रघाव बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वर्त यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेव लागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाणा सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है

एक सच्चा सब सेम दी तुर भाग मिला भाग होए। गुरमुख मेरे से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए। ओ ना मितिया पवरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते शीतल करे मनुरहो कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जीवड़ अवर ना।

प्रेनाम दृढ़ाय हर तीर्थ हर सबास रखाओ हर घर आप मिलाए गुर मैं दस्ते हर तन रास बिन गुर प्रेम न लभई जन वेखो मन रिजास हर गुर विते आप रखे हर मिले गुर सबास सागर भगत पंडार हर पूरे सदगुर पास सगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख कर प्रगास मनमुख पाग विहूणिया तिख मुइया कंधी पास गुरदाता दाता रहे ओ मांगो दान गुर पास किरीम चुन्ना मेल प्रभ मैं मनतन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमुख हर दे समाणी जप हर हर कथा वडभागिया है उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुर पूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा निसदा कर गुरमुख अकथ कहानी ही रखाओ मैं मन तन खोज ठंडोलिया क्यों पाईए अकथ कहानी संत जिना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुर पुरखे पुरख मिलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वडभागी गुर सेवया हर पाया सुगड़ सुजानी मनमुख पाग विहूणिया तिन दुखी रहन विखाणी हम जाचक दीन प्रो तेरे मुख दीजे अमृत बाणी सतगुर मेरा मित्र प्रभ हर मिलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति हर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाओ लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मेरे संगत श्रद्धा उपजे गुर सबदी हर चार।

को दान आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता, दावरेन शरणाए, कौ नानक हर मिल पे एक महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस अंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो, मुक्ते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुदत, चलते खबर ना पायो रघाओ। सैन सीर पवन अर पानी, बजदा खिमाने प्राते, पंच तत मिल पयो संयोगा, इन मैं कवन दोराते। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो में पाई, जन्म मरण उसी कौ है रे, ओहा आवे जाई। वर्ण चेन नाई किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजार है, तब एक एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना कालेओ, नाम रतन गुणहर बनजे, लाद वखर ले चालेओ। सेवक की ओढ़ किनभी प्रीत, जीवत साहेब सेवो अपना, चलते रखो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा की नहीं ठाकुर, तिस्ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रे पीतर, उठ ओवाहू को दौरियो। आज्ञा मैं पूख, सोई कर सूखा,

असाध रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू टारियो प्रा विसत मां दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू मोहल्ला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए साचा सोए सुख पाया फिर।

माया माध मन तन संग जाता तृष्ण ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सा बोला आपत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक कीर्तना जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बहुबत जोनी फिरत अनेता जय जानू तय रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत विस्तारा अहंग मेव मूठो बेचारा अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई।

तिसै बूझ जिन तू किया प्रभ करण कारण एक रखाओ चेत मन में तज सियाणप जोड़ सगले भेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवां पत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महापौजल माहे तुलहो जाको लिखे उमा।

पूरे सावास है काटे मन पीरा लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है भाणे बक्से पूरा तनी सच कार कमाइए विछड़िया को मेल लय गुर को बर जाइए लाले गोले मत खरी गुर की मत निकी ताती सुरत सुहावनी मानमुख मत फीकी मन तन तेरा तू प्रभु सज तीरक तुरकी सचे बैसन उठना सच भोजन भाख्या चित सचे वितो सचा साचा रचाख्या साचे घर साचे रखे गुर बचन सुपाख्या मनमुख आलस घणो फाथे उजाड़ी पाथा चुगे न चोगड़ी लाग बंद बिगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे ने ताड़ी अनहत लाला विद्या प्रभगेत प्यारी बिन साचे जियो जल बलो झूठे वेकारी बाद कारा सब छोड़िया साची तरतारी जिन्नी नाम सारिया।

युक्त सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिखना पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुंजा वेद करे उचार तेमर स्वामी सुख सहज पुंच नहीं अंत पारा वार अनक प्राशित मिटे खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन ओड़दान इसनान बर बुद्ध सुध प्राण सर्वस संतना की रास बिसर नाही निम्फ।

उगाए बैसे हो, शरम ना रहे हो शरीर, मां सागर नए व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत, दिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत, ऊच नीच विकार सुकृत संग लगन सब सुख शत्र, मित्र सतर ना कशु जान सर्व जी समत, कर प्रगास प्रचंड प्रगटेओ अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है करण लागे मन ना पयो विकात, सीत मंद सुगंध चलेओ सर्व थान समान, जहां साक्ष तहां लागेओ तिल ना संका मान, तो पाए अपाए जो निवटे आवे सीत ताका जाए, आप पर का कश ना जाने सदा सहज सुपाए, चरण सरण सनात त्यो मान।